इतने करीम इधर सर झुका उधर राजी हो गए।

0: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
0: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा न होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: Like us on facebook.com/fm247365

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
2: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
3: FM 100, लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।

0: It's 8 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Cool King.
3: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी. छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा. लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता एसी.
4: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन. 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार बनाए हर मैच को शानदार. पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड. 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए. हायर मोर क्रिएशन मोर पॉसिबिलिटीज.
5: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
7: अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें. प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम.
8: इनड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है. ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता. ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इनड्राइव पर नहीं होती. इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है.
9: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर AC अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
10: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी. जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से. तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
11: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
12: 100 FM.
13: Ab milenge tamam network ke loads aur packages ek app par. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: AGS ट्यूबलर दिखाए काम. AGS ट्यूबलर बैटरी दिल को है आराम.
2: एंड कूल किंग हेयर ऑयल जैसे चलता फिरता AC.
6: And हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट नो वरीज.
9: एंड हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
7: एंड अगर आप हैं इनड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
9: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
14: एंड MCB Bank for life.
9: And live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
14: And

अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आजय समीहा. उम्मीद करती हूं कि आपकी सुबह हंसती गाती खिलखिलाती हो हमारे साथ. और आज तो बादल भी बाहर निकले हैं, छा गई है बादलों के साए. अब बस ये बादल बारिश वाले हों क्योंकि हफ्स भी हो जाता है. लेकिन खैर, मौसम अगर तेज धूप नहीं है तो फिर कराची वालों का खुश होना तो बनता है क्योंकि हम बस गर्मी के अंदर ना पूछो बड़े सताए हुए हैं. खैर, गाने तो हम जो है वो आपको सुनाते रहेंगे, गाते रहेंगे, लेकिन हम अपने शो का आगाज करते हैं हमेशा कुरान शरीफ के तर्जुमे के साथ. आजकल हम पढ़ रहे हैं सूरह दुहा का तर्जुमा. आगे पढ़ते हैं आयत नंबर 5 से. और आयत नंबर 5 का तर्जुमा मैं आपको वापस एक दफा रिपीट कर देती हूँ क्योंकि उसका बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा है. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम. और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे. क्या उसने तुम्हें यतीम ना पाया फिर जगा दी, फिर उसने तुम्हें अपनी मोहब्बत में गुम पाया अपनी तरफ ला दी, और उसने तुम्हें हाजतमंद पाया तो गनी कर दिया. आप सुन रहे थे सूरह दुहा का तर्जुमा. और कोशिश ये करें कि जब भी कुरान शरीफ पढ़ें तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि आपके दिल में और जिंदगी में आसानियां पैदा हो, नूर पैदा हो. और इसमें क्या है, मुझे इतनी अच्छी लगती है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे. और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है क्या कहते हैं उनका जो रिश्ता था कि यतीम पाया फिर जगा दी, तो अल्लाह ताला देख रहा है आपकी तकलीफें, आप अकेली नहीं है. तो अभी आप अगर दुख भरी जिंदगी गुजार रहे हैं तो एक दिन ये दुख भरी जिंदगी खुशी से बदल जाएगी दोस्तों. एनीवेज, और हम अपने शो का आगाज करते हैं आबदा परवीन और अली सेठी की आवाज में इस सूफी कलाम से. आइए सुनते हैं.

0: 15 AM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और शॉबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर अभी जैज कैश डाउनलोड करो पाओ इंस्टेंट लोड एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस वो भी बिना किसी रिटेलर के आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जस्ट कैश है ना
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: This program is brought to you by
5: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
0: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC, and
3: Higher Ka Naya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling, Aur Energy Saving, No Frost, No Worries,
0: and
1: Higher T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter, For Extreme Heat.
0: And
6: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: And
7: Lifebuoy Anti-Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg 100% आगे बढ़ो बिना रुके
0: And
8: MCB Bank for Life
0: And
9: Live Lighter Have a weight management conversation with your doctor today
0: And

Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

जी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आजय समीहा और उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। वक्त हुआ है कि मैं आपको बताऊं कि आज का हमारा अजीमुशान टॉपिक क्या है। और आज का हमारा अजीमुशान टॉपिक यह है दोस्तों कि क्या आपको दूसरों को कन्विंस करना आता है, क्या अपनी बात मनवाना आती है आपको। और ये एक ऐसा आर्ट है जो बहुत ही ज्यादा कम लोगों को आता है, बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है क्योंकि हम लोग खुद भी आसान नहीं है। और अगर कभी कभी आसान सीधी बात भी हम नहीं मानते, कभी हमारी अना रोक देती है, तो ऐसे माहौल के अंदर लोगों को कन्विंस कर पाना, अपनी बात मनवा लेना, ये एक कमाल बात है। और इसके लिए जरूरी है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी भी अच्छी हो। आप एवी अगर आप हैं और एवी ही लग रहे हैं तो फिर किसी ने नहीं आपकी बात माननी। तो इसलिए आप मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपके अंदर ये खूबी, ये हुनर है कि आप लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, अपनी बात मनवा पाते हैं। तो हमें आप मैसेज करें। और मैसेज करने का तरीका है दोस्तों क्या तरीका है वैसे, ये भी बात मुझे बताएं। नहीं सर, मैं रोज तो आपको बता रही होती हूँ। तो मैसेज करने का तरीका भी यही है दोस्तों कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, उसे भेज देंगे आप 3636 पर। तो हमें इंतजार रहेगा आप लोगों के मैसेजेस का। और अभी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा हम डांस कर लें, क्योंकि पता है मुझे ऐसा लगता है कि डांस करना भी जिंदगी में जो है ना बड़ा जरूरी है। और बिकॉज आई फील दैट कि अब बंदा जो है ना वो सुबह सुबह एक्टिव हो जाता है अगर वो डांस करे। ये मेरी बातें हैं, आप बताएं कि आपका क्या सीन है। और मतलब अगर आप सोचेंगे डांस करने वाले लोगों से, मैं तो आसानी से कन्विंस हो जाती हूँ। नहीं खैर, डांस इसलिए भी जरूरी है कि इंसान एक्टिव हो जाता है, उसका मूड अच्छा हो जाता है। और आपको मेरे ख्याल से डेली बेसिस पे डांस करना चाहिए। थे कराची वालों का मसला भी यही है कि डांस ही नहीं करते, मतलब यू नो सुबह सुबह कोई एक्टिविटी नहीं, बस सुबह उठे हैं वही सड़ावा मुंह लेके ऑफिस जा रहे हैं, वही सड़ावा मुंह लेके वापस आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सुबह सुबह बड़े एक्टिव होते हैं और सुबह सुबह जिम जाके फिर ऑफिस जा रहे होते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से बड़ी इम्प्रेस होती हूँ कि यार मतलब जिम जाके, ऐसी बात नहीं है आप जिम जाएं, इस वक्त जिम्स भी भरे हुए होते हैं। सम पीपल आर वेरी डिसिप्लिन्ड एंड दे लव टू वर्क आउट। तो खैर, हम तो मुझे तो जिम जाने का सुबह टाइम नहीं होता क्योंकि मैं यहाँ पे आ रही होती हूँ इसीलिए। तो आप लोग करें या ना करें, मैं तो डांस करने जा रही हूँ, ये जो बात है। तो वी आर डांसिंग ऑन दिस सॉन्ग, लेट्स एंजॉय।

जी यहाँ पे हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और कैसी चाह रही है आपकी गुड मॉर्निंग. जरूरी है कि आपने अच्छा नाश्ता कर लिया होगा. नाश्ता करने के बड़े फायदे हैं जिंदगी के अंदर और दूसरों को कन्विंस करने के भी बड़े फायदे हैं. कुछ लोग वैसे बड़े फेलियर होते हैं कन्विंस करने के मामले में. वो जिंदगी में किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाते, फिर वो बेचारे कोशिश भी करना छोड़ देते हैं कि कोई हमारी बात कभी मानेगा. अब तो ये हो गया है कि माँ बाप भी थक जाते हैं, कहते हमारे बच्चे ने हमारी बात नहीं माननी. लिटरली अब ये हो गया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कभी कन्विंस नहीं कर पाते कि आपने ये करना है वो करना है. लेकिन पेरेंट्स एक ऐसे मतलब दो लोग होते हैं कि वो अपने बच्चों पे गिव अप नहीं कर सकते. वो बस ट्राई ही करते रहते हैं. हर वक्त उनका ही होता है बच्चा ये कर ले ये कर ले और उनके बच्चे. और कभी गिव अप करना भी नहीं चाहिए. जो लोग कभी मैं देखती हूँ पेरेंट्स को भी कि वो मेरी बात नहीं सुनता. तो अगर कोई बच्चा आपका, क्योंकि आप गैरों पे तो हमारा जोर चलता ही नहीं है, आपका अपना बच्चा अगर आपकी बात नहीं सुनता तो ये एक तकलीफ दे बात भी है. लेकिन फिर इस पे गिव अप भी नहीं करना चाहिए. हो सकता है आपका जो तरीका है कन्विंस करने का वो सही नहीं है. आप उसके मतलब आपको उस आपका इफेक्ट का इम्पैक्ट वो नहीं पड़ रहा और या तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि वो आपकी बात नहीं सुन रहा. और पेरेंट्स और बच्चों की जो दूरियां हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चों की लाइफ में क्या हो रहा है. अब जैसे कि अभी ये जो पिंकी केस है जिसके अंदर अब पता चल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पिंकी का जो टारगेट है कि स्टूडेंट्स लेते हैं काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स, विच इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग. बहुत ही कोई टेंशन वाली बात है. सुबह सुबह नहीं करनी चाहिए बट दिस इज ट्रू, दिस इज अ फैक्ट. और के ड्रग्स जो है स्टूडेंट्स ले रहे होते हैं, भले वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो यूनिवर्सिटी के हो, इवन ए लेवल स्टूडेंट्स भी ड्रग्स उन तक पहुंचती है तो लेते हैं. और फिर उसमें इन्फ्लुएंस होते हैं उनके फ्रेंड्स कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के दोस्त कौन से हैं और वो कैसे स्टूडेंट्स हैं. और कोशिश यही करनी चाहिए कि आपके बच्चों के जो दोस्त हैं वो अच्छे हों और पढ़ाई में अच्छे हों, उनकी हेल्थी एक्टिविटीज हों. और आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे किस वक्त कहाँ जा रहे हैं. अक्सर मैं पार्टीज आपको क्या लगता है, मैं भी पार्टीज में कभी कभी जा रही होती हूँ तो मैं ये देख रही होती हूँ कि यार मतलब यू नो पेरेंट्स को पता ही नहीं है क्योंकि इतने बच्चे, उनके अंडर एज बच्चे जो है वो इधर इधर क्या कर रहे हैं, इधर इन पार्टीज में क्या कर रहे हैं. और मतलब इट्स काइंड ऑफ स्कैरी कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि उनके बच्चे इस वक्त एग्जैक्टली हैं कहाँ. और अगर आपका बच्चा 18 साल से कम है तो आपको तो हर वक्त उस पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि वो बच्चा आपका इस वक्त कहाँ मौजूद है और पेरेंट्स ने ऐसे छोड़ा हुआ है. और ये सिर्फ डिफेंस या एलीट क्लास, खैर डिफेंस को मैं कहीं से एलीट क्लास नहीं, मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान में कोई भी एलीट है क्योंकि हम एक गरीब मुल्क है. फिर भी ज्यादा ये डिफेंस के एरियाज में नहीं होते. इसके अलावा भी पेरेंट्स को नहीं पता होता. अगर आप छोटे इलाकों में भी जाएं, अगर माँ बाप को नहीं पता होता कि उनके बच्चे बाइक चलाते फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर 13-14 साल की उम्र में. और मुझे समझ उनकी अम्मियों को क्यों नहीं पता कि आपका बेटा बाइक लेके निकला हुआ है. ओ जी मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता. मतलब वो उसने इतनी आपकी डिसोबीडियंस करनी है कि उसने आपकी मर्जी के बगैर चाबी लेनी है और बाइक को निकाल लेना है. तो कहीं ना कहीं मसले हैं. सोचना चाहिए डायनामिक्स में कि आप अपने बच्चों को ये कन्विंस नहीं कर पा रहे कि बेटा 18 साल तक रुक जाओ, सारी उम्र ही चलानी है गाड़ी, तुम्हारे शौक पूरे हो जाने. तो ये कन्विंस करना का आर्ट जो है ना ये सीखना चाहिए. और कुछ जिंदगी के ऐसी चीजें होती हैं जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं या आप दुनिया में कोई मकाम नहीं है आपका, एवी ही हैं आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको से कोई कन्विंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपकी बस वही है. लेकिन अगर आप माँ बाप बन चुके हैं तो फिर जरूरी है कि आपके बच्चे आपकी बात सुनें, वरना फिर माँ बाप बनने का क्या फायदा है, क्योंकि मतलब कोई सीन नहीं है आपका. तो खैर ये हमारी बातें हैं, आप बताएं कि आप आसानी से कन्विंस होते हैं कि नहीं. एनजी तो मुझे नहीं लगता बड़ी आसानी से. अच्छा अब टॉपिक पता करना है उनको कि वो ऑफ एयर. ओके फाइन मैं बता देती हूँ आपको टॉपिक क्या है. तो टॉपिक ये है एनजीक हमारा कि क्या आप आसानी से लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, अपनी बात मनवा पाते हैं, आपके अंदर ये हुनर सलीका है, रोशनी है, या फिर आप लोगों की बातों में खुद ही कन्विंस हो जाते हैं. ऐसे भी लोग होते हैं जो बस दूसरों की हर बात मान रहे होते हैं, अपनी अकल उनको नहीं पता कि कहाँ चली गई है. तो खैर आपकी जो भी सूरत हाल है हमें मैसेज करें, क्योंकि मुझे नहीं बताएंगे तो फिर किसे बताएंगे. हमें मैसेज करें आज समिया के फेसबुक पेज पे या @आजसमिया इंस्टाग्राम पे. एक और तरीका भी है दोस्तों कि अपने मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें KHI स्पेस आपका नाम आपका मैसेज, उसको भेज देंगे 3636 पर. जैसे कि कल थरपाकर से जुनेस साहब का हमें मैसेज आया था इसी प्लेटफॉर्म पे. तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान.

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेट उठाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
1: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैग सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 Hz पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
2: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
3: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर AC अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
4: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
5: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
6: इंट्रोसिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
7: क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
10: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
11: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
12: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज़ कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज़ कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
4: and Hire Ka Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving, No Frost, No Worries,
3: and
5: Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat.
6: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
3: एंड
7: लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: एंड
8: MCB बैंक फॉर लाइफ।
3: एंड
9: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
3: एंड

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur
1: bhul ja. एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
5: Ab milenge tamam network ke loads aur packages ek app par. Abhi Jazz Cash download karo. Pao instant load, exclusive offers aur discounted packages. Wo bhi bina kisi retailer ke. Aasan aur instant package activations ke liye. Jazz Cash hai na.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC.
3: And Higher Kan Naya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling, or Energy Saving, No Frost, No Worries.
2: And
4: Higher T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat.
2: And
5: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
2: एंड
6: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
2: एंड
7: MCB बैंक For life
2: and
8: live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
2: And

तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी,

0: electronic jalsazi, spamming, dhokadehi, bashamul identity theft, child pornography, aur cyber stalking, aur anchahi mudakhalat, maslan kisi bhi fard se zabardasti ya bar bar rabita karna, mutalliqa shakhs ki razamandi ke bagair, uski tasaveer ya videos banana, aur share karna wagaira sangeen jaraim hai. इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk मुफादे आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा, तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्मे इस्तेहकाम मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफादे आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने अपने आप को से तीन बार मौत देखी।
5: का टाइम सी मनु ऐसे के मैं हूं, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने साडीया वीडियो बनाया, सानू मारया, सब कुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चंगुल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
9: FM 247365। किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
10: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
9: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
11: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
10: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
9: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हुई।
11: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
10: सिर्फ बातें बनाने से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते।
11: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
9: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
10: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
9: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
12: FM 100 ट्रैफिक अपडेट।

0: यूनिवर्सिटी रोड से वो ट्रैफिक जो नीपा चौरंगी से जेल चौरंगी और वहां से जा रहा है शहीद मिलद रोड की जानब, इस दरमियाने रास्ते तक तामीरी काम जारी होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी कुछ स्लो है। लिहाजा वो तमाम लोग जो इन रास्तों पर सफर करना चाहते हैं अपने टाइम को मैनेज करते हुए आए ताकि बर वक्त अपनी मंजिलों पर पहुंच सके। मजीद अपडेट कहने के लिए सुनते रहिए FM 100 पाकिस्तान।
1: दिस ट्रैफिक अपडेट वॉज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।

वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट आज समीहा. और आप लोगों के काफी सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं. अभी दमीर के मैसेज आ रहे हैं. अकबाल हुसैन साहब ने बहुत ही अच्छी तस्वीर मुझे गुड मॉर्निंग की भेजी. काश कि मैं यहाँ पे होती कश्ती में जा रही होती झील के अंदर. और सुना है कि मौसम अच्छा हो रहा है. खैर मौसम दिल का अच्छा होना चाहिए और जेब का भी अच्छा होना चाहिए. मुझे फिलहाल जेब के मौसम में काफी इंटरेस्ट है क्योंकि अगर जेब का मौसम अच्छा होगा तभी आप बिजली का बिल अदा कर पाएंगे. और बिजली के बिल आने जिनके नहीं आए हैं वो नफले वफले मांग लें क्योंकि इतनी गर्मी है. एसी मुल्क आप मैं तो खुश हुई भाई बारिश हो कुछ तो हो. और तो आबद अमीर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नाइस. लगता है नाइस बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि बात मानने पर जो महरियाना तबसरे होंगे उनमें से चंद मोती हम भी चुन लेंगे क्योंकि हमें तो बात मनवाना नहीं आता बल्कि वरना हक दबाने वाले और कर्जदारों से पैसे ना निकलवा लेते. ऐसी बात नहीं है. मुझे भी लगता है कि आपको जो है ना मुझे लगता है कि आबद अमीर आपको तो बड़ा अच्छा आता होगा क्योंकि आप मतलब इतने आपके अंदर अच्छे अखलाक वाले लोग ना अपनी बात हंसी हंसी प्यार प्यार में ना मनवा लेते हैं. और जो बात अच्छी अखलाक वाले मतलब कर लेते हैं ना तो वो मतलब जो सड़े हुए लोग होते हैं ना तो वो भी क्या कहते हैं नहीं मनवा पाते. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इंसान का अखलाक अच्छा हो. जो लोग अच्छे लगते हैं ना हम उनकी बातें भी मान लेते हैं और जो लोग अच्छे नहीं लगते वो लाख हमें कुछ भी बोले वो सही बात भी उनकी गलत लिखती है. आपने कभी सोचा इस बारे में है कि ये क्या कोई खुला तजाद नहीं है. लेकिन बस इंसान के इंसान के ऊपर है किसके अंदर कौन सा पावर है. आपके अंदर है कि नहीं आप बताएं कि क्या आप आसानी से अपनी बात मनवा लेते हैं. और बीवियां तो मनवा लेती हैं बीवियों के पास बड़े हथियार हैं अपनी बातें मनवाने के लिए. और वो बेटा जो शादी से पहले सिर्फ अम्मा अम्मा कर रहा होता है शादी के बाद बस फिर अम्मा जो है ना जो है क्या कहते हैं बस थोड़ा पीछे रह जाती है. कैसी बात नहीं है अपनी अम्मा. मुझे लगता है कि जो अच्छे मर्द होते हैं उनको बैलेंस रखना आता होता है कि कहाँ अम्मा की बात सुननी है कहाँ बीवी की बात को अहमियत देनी है. और माँ की बात जो नहीं माने वो अक्सर पछताते हैं. एनीवेज अभी हम सुनते हैं कि मौसम थोड़ा चेंज हुआ है. पता नहीं बारिश होती है कि नहीं लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है. तो हम गाना सुन लेते हैं रेन बाय मैडोना.

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Cool King. Chai hotel mein baithe ho. Chai garam, mausam garam. Aur discussion usse bhi zyada garam. Politics ho ya cricket, sabka temperature high. Lagao Cool King Hair Oil aur cool ho jao. Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
3: Higher Mini LED TV ke saath 3 mahine ki tap mag subscription bhi with free installation 144Hz picture quality jandar banaye har match ko shandar powerful KEF British speakers aur woofers ka amazing sound kare aapko excitement se surround 3 year warranty aur 6 month free replacement ke saath aaj hi Higher Mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye Higher more creation more possibilities
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां
5: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर
6: अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें प्लैटिनम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम
7: InDrive सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी InDrive पर नहीं होती इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
9: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी जैसे FPR टैक्स ट्रैफिक चालान पासपोर्ट फी गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी घर बैठे जैस कैश से तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना
8: Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. No frost, no worries.
10: Public Service Message. شدید گرمی کے باعث شہریوں سے گزارش ہے کہ صبح 11 بجے سے شام 4 بجے کے درمیان خاص احتیاطی تدابیر اختیار کریں غیر ضروری طور پر باہر جانے سے گریز کریں ہلکے کپڑے پہنے سر ڈھانپ کر رکھیں دھوپ میں سخت جسمانی مشقت سے بچیں اور بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیں زیادہ پانی پیئیں اور محفوظ رہیں یہ عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे,
1: सिर्फ मेल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: Tum kabhi na jhuki, magar is wazan ke aage tumhare jism ne hi tumhe thakaya. तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
5: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
6: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
7: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
8: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
9: AGS ट्यूबलेट, दिखाए काम। AGS ट्यूबलेट बैटरी, दिल को है आराम।
10: एंड कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
11: And हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
12: एंड हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
13: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले।
2: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
14: एंड MCB Bank for life.
15: And
6: live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
14: And
16: tufaan hai, har jeet ki pehchan hai.
14: And
17: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
14: And
18: aaj hi hire mini LED TV line aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
19: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
20: FM247365.
21: Let's celebrate
22: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
23: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

Welcome back. After the break, you're tuned into FM 100 and this is RJ Sumiha. Hopefully you're having a good morning. And hum hai aapke saath this baje tak. And mausam kaisa ho raha hai? Waise main to studio mujhe to pata nahi chal raha, lekin agar aapke paas mausam ki koi achhi report hai to humse rabta kare. Anyways, aur hamare paas aap logon ke paighamat aa rahe hain. Aaj hum ye baat kar rahe hain ki kya aapko logon ko convince karna aata hai, matlab apni baat manwani aati hai ya aise hai aap. अच्छा, एक बार हुसैन साहब कहें अस्सलाम वालेकुम समीर जी, आज के दौर में अपनी बात मनवाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आज के दौर में सुनने वाले कम बोलने वाले ज्यादा हैं, हर कोई अपने आप में आलिम है, मुझे सब पता है वाली रविश चल पड़ी है, इसलिए अच्छा है अपनी बात बोलकर खामोश हो जाएं। बिल्कुल सही बात है। और मैं बताऊं, अलग अलग कौमों के अलग अलग मिजाज हैं। आप कराची में, इसलिए आप तो बस एक दफा बोलेंगे अपनी बात और खामोश हो जाएंगे। पंजाब के अंदर आप किसी से डिसएग्री तो कर दें, जब तक वो आपको घर छोड़कर नहीं आएगा ना, उसने नहीं कन्विंस होना। मैं खुद अपने पंजाबी फ्रेंड्स को देख के हैरान होती हूँ, अच्छे खासे दोस्त होते हैं लेकिन अगर कोई बहस चल गई तो जी वो ऐसी बहस है, वो बंदा प्रूव करके ही रहेगा कि सामने वाला गलत है और वो सही है। हम कराची वाले मासूम लोग कहते हैं ठीक है, नहीं मानने कोई बात नहीं, चले आते हैं अपने किसी और काम पे। वो कि पंजाब ही नहीं छोड़ेगा, वो तो कन्विंस करेगा। अच्छा, केपीके का सिंपल रूल है, तो मेरी बात नहीं मान रहे हो बस गोली मार दो सीधा, कोई बात ही नहीं, इधर उधर लेफ्ट राइट ही नहीं है, वहां पे जाके सीधा गोली ही मार देते हैं कि जी उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा जमीन मेरे बाप की, उसने कहा नहीं जमीन उसके बाप की है, तो बस मैंने गोली मारनी थी। तो बस ये उनके यहाँ सिंपल चीजें हैं, नॉट कन्विंस करने का बेस्ट तरीका है मार दो। अच्छा, और हर मतलब बलूचिस्तान के बारे में मुझे इतनी ज्यादा वाकफियत नहीं है कि मैं कुछ वो सूख से बोल सकूं, कि मिजाज के वो लोग भी सख्त लगते हैं कि अपनी बात मनवाना, लेकिन खैर आप स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते, हर कौम में हर तरह के लोग होते हैं। कराची वाले भी कुछ बहुत बहस करते हैं कि जी ऐसी बात नहीं है कि हमारी बात मानो, लेकिन मेजोरिटी कराची वाले का इतना बहस ही आई होती तो अपनी बातें मनवा लेती गवर्नमेंट से, एक हमारी जिन गवर्नमेंट है ये ना मानी कि लोग परेशान हैं, इनको लगता है कि कराची पेरिस की तरह है। ये पता नहीं कब मानेंगे कि कराची पेरिस नहीं है, ये एक पेरिस का भी मजाक ही है। अगर पेरिस वालों को पता चल जाए कि हम कराची को पेरिस से मिला रहे हैं तो वो बेचारे क्या सोचेंगे हमारे बारे में। खैर, तो हम अच्छा अब मैं जो हूं ना अभी क्या कहते हैं आपके लिए कोई गाना ढूंढ रही हूं जिसमें ऐसी बातें हो। अभी क्लासिक टाइम का वो है कि मतलब ये कि बंदा जो है ना वो किसी की बात मान ले और हम क्लासिक टाइम पे आपके लिए अभी हम कौन सा गाना लगाते हैं, रुक जाए हम अच्छा सा गाना आपके लिए ढूंढेंगे। ऐसी कोई बात ही नहीं है और तो हम अच्छा सा आपके लिए गाना ढूंढते हैं जिसमें बातें हों। अच्छा, हम ये सुनते हैं अनोखा लाडला और इसमें वो कह रही है कि अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद, अरे वो मान ही नहीं रहा कि भाई खुदा के लिए, वो कह रही है चांद है तुम्हें नहीं मिल सकता, कहते नहीं जी मुझे तो चांद ही चाहिए। तो ये सुनते हैं टीना सानी की आवाज में।

0: It's 9:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी JazzCash डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए JazzCash है ना।
6: किसी ने कहा था पैसे बच

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
0: and
2: Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and
3: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling or Energy Saving, No Frost, No Worries,
0: and
4: Higher T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat.
0: And
5: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
3: लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
0: एंड
6: MCB बैंक फॉर लाइफ
0: एंड
3: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: एंड
7: तूफान है हर जीत की पहचान है
0: एंड
8: फिनिक्स लगा और भूल जा
0: And
9: आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं
10: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365 100 FM.
11: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
12: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا

0: पूरा आराम। AGS ट्यूबलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
2: कूल किंग।
3: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: हायर मिनी LED टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी, विद फ्री इंस्टॉलेशन, 144Hz पिक्चर क्वालिटी, जानदार बनाए हर मैच को शानदार, पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
5: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
8: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
9: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
6: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
11: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, K Electric और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: तुम कभी ना झुके मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
4: ओबेसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली एक सीरियस और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं।
5: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
6: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
3: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
4: and Hire Kar Naya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, Jisse Mile Maximum Cooling, or Energy Saving, No Frost, No Worries,
3: and
5: Hire T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter, for Extreme Heat.
3: And
6: अगर आप हैं इन ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
3: And
7: Lifebuoy एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: And
8: MCB बैंक फॉर लाइफ।
3: And
9: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
3: And
10: तूफान है, हर जीत की पहचान है।
3: And
11: फिनिक्स लगा और भूल जा।
3: And
12: आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
13: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365

0: Cool King.
1: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात लेकिन बीपी हाई।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: This program is brought to you by Aji, Higher Mini LED TV Line और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
2: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है. अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब. रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं. टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है. वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है. जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है. आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है. तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए. कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए. हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा. फैसला आपके हाथ में है.
3: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.

0: Your location for maximum music.
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
2: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
1: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
3: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: तुम कभी ना झुकी, मगर इस वजन के आगे तुम्हारे जिस्म ने ही तुम्हें थकाया। तुम हर महफिल की जान हो, मगर तुम्हारे अंदर खाने का शोर तुम्हें परेशान कर देता है। हर गोल तक पहुंचने की भूख है, मगर सिर्फ जिस्म ने उस रफ्तार का साथ न दिया।
3: Stop fighting biology with willpower alone. Obesity is a serious, progressive and chronic disease.
4: Live lighter. Have a weight management conversation with your doctor today.
5: This program is brought to you by RG, Fire Mini LED TV Line aur Stadium ka mahol ghar mein banaye.
6: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: खवातीन और बच्चों के हकूक का एहतराम हम सब की जिम्मेदारी। दिस पब्लिक सर्विस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय FM 100।
3: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
2: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
2: 31 years of memories, milestones and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
5: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 247/365

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Like us on facebook.com/FM247365 FM247365

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365. FM 100.
3: 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
2: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

Listen to the Lunchtime Special on the Big One, FM 100.

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum, everyone. This is me, Fatima Khan, and aap sun rahe hain FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sab ke? Kaisa guzar raha hai din? Kya kar liya hai? Kya karne wale hain? तो जी एज यूजुअली होंगे आपसे खूब सारी बातें शेयर करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ प्रोग्राम में होगा बहुत सारा म्यूजिक. तो चले जी लेट्स बिगिन करते हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का बाकायदगी से आगाज एक अदद म्यूजिकल ट्रैक के साथ. तो चले जी नेक काम में देरी कैसी करते हैं प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज, फिर वापस आकर आपको बताएंगे तरीका कार कि कैसे आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा.

तो भाई नाजी हसन की आवाज के साथ आ चुके हैं हम वापस। गुफ्तगु का सिलसिला तो आप लोगों के साथ जारी रहेगा क्योंकि हम आपके साथ 2 बजे तक मौजूद हैं और अभी तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो भाई आज जो है जून की 16, सो हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर आज किसी की सालगिरह है या फिर कोई और खास दिन, और इसी के साथ साथ मैंने कहा कि भाई जरा दिनों पर भी नजर डाल लेते हैं कि आज कौन कौन से दिन जो है वो मनाए जाते हैं, तो आज भी अच्छे खासे दिन मनाए जाते हैं। लेकिन आज एक दिन है जो जिसका नाम है फ्रेश वेजीज डेज, यानी कि सब्जियों का दिन आज का दिन मनाया जा रहा है, ताजी ताजी सब्जियों का दिन। अच्छा, सब्जियों में भी बड़ी अट्रैक्शन है। आप ये देखेंगे ठेले पे, उस ठेले पर आपको जाना बड़ा अच्छा लगता है जहां पर साफ सुथरी जो है वो सब्जियां पड़ी होती हैं। सब्जियां बड़े अट्रैक्ट करती हैं आपको, और अगर आपकी पसंद की सब्जियां हैं तो वो आपको वैसी बहुत अच्छी लगती हैं। आप ये देखेंगे अगर सैलड हम खाते हैं तो सैलड इतनी अच्छी लगती है, एक तो बड़ी अच्छी कलरफुल लगती है, तो उसे खाने के फवायद भी बहुत ज्यादा है और लुक वाइज भी सैलड लुक सो गुड। और सैलेड को बनाने के भी बहुत सारे तरीकेकार हैं, लेकिन अगर देसी घरानों की बात की जाए तो उनके सलाद में ये 3-4 चीजें कंपलसरी होती हैं, जिसके नाम अगर लिए जाएं तो प्याज है जी, वो गोल कटी होगी या फिर स्लाइस में कटी होगी, उसी के साथ साथ टमाटर होंगे या फिर होगा खीरा, खीरा प्याज टमाटर। आई थिंक ये एक हर देसी घराने की ना कंपलसरी वाली सैलेड है जो कि बनती ही बनती है। वैसे तो सैलेड को बनाने की बेशुमार लातदाद तरीकेकार हैं, जिसमें अक्सर औकात जो है वो ब्रेड को टोस्ट करके डाला जाता है या चिकन चंक्स डाले जाते हैं, बहुत सारे तरीकेकार से बनाई जाती है। लेकिन जो एक्चुअली में देसी घरानों में सबसे ज्यादा बनाई जाने वाली सलाद है ना, उसमें ये चीजें लाजमी है, प्याज टमाटर और खीरा, और जब गाजरों का सीजन होता है तब गाजर और कभी कभी गोभी भी। लेकिन वैसे प्याज टमाटर के बगैर तो भाई सलाद बड़ी ही जो है ना वो इम्पॉसिबल है, लेकिन देसी घरों में ये वाली सलाद दावतों में भी बनती है, आमदनों में भी बनती है, और इसको ज्यादा मजेदार लगाने के लिए अक्सर औकात इसमें ना बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चों को भी डाल दिया जाता है, तो वो भी बड़ी अच्छी लगती है। देखिए भाई सलाद को बनाते सब हैं, लेकिन अलग अलग तरीकेकार के जरिए, और जहां तक मैंने इस सलाद का जिक्र किया वहां पर प्याज भी अक्सर औकात खाने के साथ सिर्फ प्याज भी खाई जाती है, वो भी बारीक बारीक कटी हुई, और उसके साथ अगर वो सिरके में डूबी हुई होना तो ओहो खाने का मजा ही दुबाला हो जाता है। तो भाई सब्जियों से तो गहरा ताल्लुक हम सबका ही है, बहुत सारे लोगों को सब्जियां बड़ी पसंद होती हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो सब्जियों को शौक से खाते हैं नहीं खाते, लेकिन भाई सब्जियों के बहुत सारे फवायद हैं। और इस वक्त जो कराची का भी वेदर चल रहा था जो कि शदीद किस्म की गर्मियां पड़ रही थी, इस वक्त यही कहा जा रहा था कि जी गजा जो है वो अपनी लाइट रखें, कोशिश करें कि जी ज्यादा हैवी खाने ना खाएं, तो सलाद खाएं, इसी के साथ साथ सब्जी बनाकर खाएं, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। और सब्जी बनाने के भी तरीकाकार हैं। अक्सर औकात हम सब्जी को बहुत ज्यादा भून लेते हैं कि उसका जितना भी न्यूट्रिशंस होता है वो नहीं हमें मिल पाता, तो इसको भी बनाने का तरीका कार है जिसे हमें फॉलो करके बनाना चाहिए। सब्जियों पर बहुत सारी बात हो गई, तो भाई ये भी जान लेते हैं कि आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा सब्जी कौन सी है जो कि आपको जब भी आपके सामने आए आप उसे बड़े हंसी खुशी खा लेते हैं। वैसे तो ये बच्चों वाला सवाल हो गया, अक्सर औकात हम बच्चों से जरूर पूछते हैं कि तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है या पसंदीदा सब्जी कौन सी है, तो आज हम आपसे भी जानेंगे कि भाई आपकी पसंदीदा सब्जी कौन सी है जिसे आप बड़े शौक से खाते हैं, कोई एक स्पेसिफिक सब्जी है या फिर आपको सारी ही सब्जियां बहुत पसंद है, तो हमें जरूर बताएं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे, और हमें जरूर बताएं कि जी आपकी पसंदीदा सब्जी कौन सी है। जब तक आप हमें बता रहे हैं हम चलते हैं आसिम मंजर की आवाज की जानिब और फिर वापस आकर जानते हैं कि आपकी पसंदीदा सब्जी कौन सी है।

0: कुकिंग।
1: चाय होटल पे बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम, और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे

0: 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा ले, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करे और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
1: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
2: नशा न परेशानियाँ खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
5: जी तो भाई जरीन नूर हमें मैसेज करती हैं, कहती हैं सलाम, कैसी हैं, तबीयत कैसी है, बहुत सारी दुआ आपके लिए, थैंक यू सो वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तबीयत भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बहुत शुक्रिया दुआ के लिए, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। और भाई सब्जी का जिक्र करना ही था कि हमारे पास मैसेजेस का सिलसिला भी जारी है, और अगर आपने भी अभी हमारा अभी प्रोग्राम ज्वाइन किया है FM 100 पे, तो आप सब सुन रहे हैं प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल विद मी फातिमा खान। तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपने करना कुछ यूं है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। आज हमने आपसे ये जाना है कि जी आपकी पसंदीदा सब्जी कौन सी है जो आपको बहुत पसंद है, सारी सब्जियां आपको बहुत पसंद है, स्पेसिफिकली कोई एक सब्जी है जो कि आपकी बड़ी फेवरेट है, तो वो कौन सी है हमें जरूर बताएं। तो मैंने कहा चलें जी चंद सब्जियों के आपको फायदे भी बताते चलते हैं। तो अगर ब्रोकली की बात की जाए, ब्रोकली वैसे बहुत कॉमनली नहीं खाई जाती लेकिन लोगों को पसंद है, तो इसके अंदर भी मौजूद होते हैं विटामिन्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है ये। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए पालक की, तो पालक में मौजूद होता है आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स, और इसी के साथ साथ गाजर आंखों और स्किन के लिए बड़ी फायदेमंद होती है। और गाजर का टाइम बड़ा अच्छा होता है, जब वो वाली गाजर आती है सर्दियों में ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है। अभी भी आपको गाजर पूरा साल मिल जाती है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल की बात तो नहीं है, लेकिन वो वाली जो जायका उस वाली गाजर में होता है जो कि एक्चुअली में सर्दियों के टाइम में आती है ना, उसकी तो मैं कहती हूं भाई बात ही अलग है। उसे आप सलाद में खाएं या फिर ऐसी रूखा खाएं या फिर उसका जूस पिएं, वो दोनों सूरत हाल में आपके लिए बड़ी फायदेमंद रहती है। और मेरे ख्याल से गाजर भी सबकी पसंदीदा सब्जियों में से एक सब्जी है। और खीरे की बात की जाए भाई, खीरा तो जो है वो हाइड्रेशन और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। टमाटर की बात की जाए तो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और लौकी की बात की जाए तो हल्का खाना वेट मैनेजमेंट और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल जी, लौकी का पानी बड़ा फायदेमंद होता है वेट को कम करने के लिए भी, और लौकी सबकी पसंदीदा सब्जियों में से भी एक है। शिमला मिर्च में विटामिन सी ज्यादा होता है, बैंगन फाइबर और न्यूट्रिएंट्स देता है, उसी के साथ साथ मटर में प्रोटीन और फाइबर का अच्छा सोर्स है। तो सब्जियों का जिक्र करना था तो चंद सब्जियों के फवायद भी हमने आपको बता दिए हैं कि भाई कौन कौन सी सब्जी के कौन कौन से फवायद हैं, लेकिन ये तो चंद सब्जियां जिसका हमने जिक्र किया है, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं। तो देखते हैं कि भाई सबकी सबसे ज्यादा पसंदीदा सब्जी कौन सी है, फिर उसके बारे में भी आपको हम मजीद मालूमात फराहम करेंगे भाई, क्योंकि आज जिक्र सब्जी छिड़ चुका है प्रोग्राम में, तो बिल्कुल भाई इस पर खूब सारी बात की जाएगी। और इसी के साथ साथ एक अदर ट्रैक की जानिब चलते हैं और आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बातें तो और भी बहुत सारी बाकी हैं मेरे दोस्तों, जो कि हम आपके साथ करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले एक अदर ट्रैक की जानिब चलते हैं, और आते हैं वापस इस ट्रैक के बाद।

जिंदगी गुलजार है, हमें इससे प्यार है। तो भाई जिंदगी तो बड़ी ही खूबसूरत और कीमती चीज है, इसका भरपूर ख्याल रखा करें और इसीलिए जिंदगी में हंसते मुस्कुराते हुए वक्त गुजारें। अब बेजारी का मुजहरा ना करें, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जिंदगी में एक बार खोने के बाद दोबारा मिल जाती हैं, लेकिन जिंदगी वो वाहिद चीज है जो आपको एक दफा के बाद दूसरी दफा कभी नहीं मिलती, तो ये ओनली वन टाइम आपको मिलती है। तो इसीलिए इसमें अपने शौकों को जरूर पूरा करें, इसमें लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें ताकि आपके चले जाने के बाद भी लोग आपको हमेशा याद रखें, अपनी गुड बुक्स में रखें। अब बहुत सारे लोग अपने बर्ताव की वजह से, अपनी बातों की वजह से या लोगों को नुकसान पहुंचाने की वजह से कभी भी किसी को याद नहीं आते, तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप हमेशा अच्छे से रहें, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ एक दफा मिलती है और एक दफा इसे भरपूर तरीके से जिएं, दूसरों के लिए भी इसे नाजुक बनाएं और अपने लिए भी ना बनाएं, इससे जिंदगी को भरपूर तरीके से जिएं। अच्छा भाई, प्रोग्राम के सेकंड हाफ में तो आप जानते ही हैं कि हम आपसे पूछते हैं कि आपके लंच में क्या है। इतना ज्यादा सब्जियों का जिक्र किया है तो कहीं सब्जियां ही बनाने का इरादा तो नहीं कर लिया है आप लोगों ने, या फिर कुछ और आपके लंच में है जो कि पक चुका है। तो क्या है भाई, बिरयानी है, निहारी है, कबाब है, सालन है, रोटी है, सब्जी है, दही है, लस्सी है, क्या क्या इस वक्त आपके लंच में मौजूद है हमें जरूर बताएं भाई। आपका पसंदीदा तरीन इस वक्त मील क्या आपके लंच में मौजूद है। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा लगता है जब आपको पता हो कि आपकी पसंद का जो लंच है वो उस वक्त आपके साथ मौजूद है। यार ये भी एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। तो क्या कुछ ऐसे ही आपके लंच में मौजूद है, या फिर आज आपसे ज्यादा मजे का लंच आपके कुलीग के पास मौजूद है, तो लंच में क्या है हमें जल्दी जल्दी मैसेज करके जरूर बताएं, क्योंकि प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल इज इनकम्प्लीट विदाउट नोइंग व्हाट्स इनसाइड योर डब्बा। तो भाई आपके लंच में क्या है आप हमें जरूर बताएं, जब तक हम आपको एक अदर ट्रैक सुनाते हैं, फिर वापस आकर आपके लंच को भी करते हैं प्रोग्राम में शामिल।

0: तो भाई ट्रैक तो हमने शामिल कर लिया है, अब सी के साथ साथ आपके लंच में क्या है ये जानना जरूरी होता है। तो भाई जरीन नूर ने बता दिया है कि उनके लंच में इस वक्त है कीमा आलू और मटर पुलाव सलाद है, वेरी नाइस। ये तो भाई जबरदस्त हो गया बिकॉज ये भी सबका बड़ा फेवरेट मील है। और मटर का जिक्र देखिए मैंने भी किया ही था और जरीन नूर ने बता दिया कि उनके लंच में मटर पुलाव है। तो भाई मटर से ना सबका एक बड़ा ही गहरा ताल्लुक है और जिस टाइम पर मटर आते हैं उस वक्त तमाम खवातीन ना मटर को पकाने से ज्यादा मटर को स्टॉकिंग करने के चक्कर में लगी होती है कि भाई ज्यादा से ज्यादा मटरों को ना स्टॉक कर लिया जाए ताकि जब मटर का सीजन ना हो तब भी मटर को एंजॉय किया जाए। लेकिन वैसे अब तो फ्रोजन भी मिलते हैं जिसको आप बासानी खरीद कर पका सकते हैं और मटर तो लोगों के बड़े फेवरेट हैं तो खुद तो उनको स्टॉक करते ही करते हैं लेकिन साथ ही साथ जो है वो खरीद भी लेते हैं। अच्छा भाई आलू के फवायद पर भी बात की जाए तो आलू जो है वो एनर्जी देते हैं क्योंकि इसमें फवायद मौजूद हैं, पोटेशियम होता है, फाइबर होता है, विटामिन सी होता है, पेट भरा हुआ महसूस होता है, विटामिन B6 होता है जो मेटाबॉलिज्म और नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप आलूओं को फ्राइज और चिप्स की सूरत में यानी कि तले हुए खाएंगे तो वो आपके लिए तब नुकसानदेह हैं, लेकिन वैसे आलू के भी बहुत सारे फवायद मौजूद हैं। और फिलहाल हम चलते हैं एक अदद ब्रेक की जानेब और आते हैं वापस ब्रेक के बाद द ट्रैक के साथ।
1: कूल किंग। अबे देख के नहीं चलाता क्या?
2: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
3: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल

0: This program is brought to you by
1: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
2: And aaj hi Higher Mini LED TV line. Aur stadium ka mahol ghar mein banaye.
3: And
4: Higher ka naya No Frost IoT Refrigerator. Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
2: And
5: MCB Bank for life.
6: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
7: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
8: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
7: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
8: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। अपना BMI चेक करवाए,
6: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचे, वेट से आगे का सोचें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
11: Join Fatima Khan.
10: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
11: Midday break a blast.
12: जी, तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, क्योंकि प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल अपने अख्तितामी मराहिल के करीब आ चुका है। और इसी के साथ साथ हम आपसे कुछ ही मिनटों में इजाजत भी लेंगे और फिर इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे। तो इसीलिए भाई, अगर बनना है आपको हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, तो इसमें आपने देर नहीं करनी है, बल्कि जल्दी से अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, KHI लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें और सेंड कर दें 3636 पे। और भाई, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो अपने एंडिंग पर ही है, तो इसी के साथ साथ हम आपको कुछ अच्छे मशवरे भी देंगे अपनी जिंदगी को गुजारने के, जिसमें अच्छे मशवरों में से एक मशवरा ये है कि जी आपने जो है वो गुस्से से गुरेज करना है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा अच्छा मशवरा यह है कि आपने अपनी नींद को पूरा लेना है, ये एक बड़ा जरूरी काम है जो कि आजकल हम नहीं कर रहे हैं। और आजकल ये मजे की बात यह है कि सिर्फ बच्चे और यंग जनरेशन को ही हम इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकते, बल्कि बड़े भी यही कर रहे हैं कि रात को जल्दी नहीं सोते हैं, मोबाइल देख रहे हैं या कोई और मसरूफियात। तो एक डेढ़ बजना तो लाइक इट्स नॉर्मल यार, एक डेढ़ बजे आज तो मैं जल्दी सो गया, 12 बजे, 1:30 बजे, यार ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आप लोग अपनी 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें, प्रॉपर सोएं। और एक जो बेचैनी रहती है ना हमें सोते वक्त, अक्सर औकात बहुत सारे लोगों को कि सो रहे हैं लेकिन बार बार मोबाइल चेक करना है या देखना है किसका मैसेज आया है या किसी ने क्या स्टेटस लगाया है, तो यार ये बेचैनी को ना आपने साइड में रखना है ताकि आप सुकून से सो सकें। ये जो बेचैनी होती है किसी को कि किसी ने मेरा स्टेटस देखा या नहीं देखा, और ऐसी बेचैनियां होती तो हैं भाई सब लोगों को कि किसने मेरा स्टेटस देखा नहीं देखा, जिसके लिए लगाया था उसने देखा या नहीं देखा, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग इस तरह भी करते हैं, लोगों के दिल को जलाने के लिए भी, तंज तारूज करने के लिए भी। अक्सर औकात को जिस तरह की पोस्टिंग होती है, और असल जो एक अहम काम होता है ना वो ये होता है कि उसका व्यू आ जाए जिसको जलाने के लिए पोस्ट किया जा रहा है, और उसका व्यू आते ही आपको तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई असल पर्पस तो उसको दिखाना था। तो इस वाली बेचैनी को भी खत्म करना है आपने, और सुकून से सोना है, अच्छी गजा लेनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छी गजा का इस्तेमाल करें, अच्छी गजा खाएं। बाहर का खाना में हकीकत है कि जी बहुत अट्रैक्शन है और बहुत मजे का लगता है, लेकिन इसका भी जरूरत से ज्यादा खाना आपकी सेहत को मुतासर कर सकता है। तो वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ या थ्राइस इन अ मंथ तो आप खा सकते हैं, लेकिन एवरी डे या वीक में ऐसा ना करें कि जी दो तीन दफा बाहर का खाना खा रहे हैं, तो इससे भी आपने कुछ गुरेज करना है। और वॉक भी करनी है, क्योंकि वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले ये चीजें हम एक्टिवली किया करते थे, इनको कोई स्पेशली हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तभी हम फिट भी रहते थे, लेकिन आजकल हम बहुत ज्यादा सुस्ती का शिकार हो गए, जिसकी वजह से हम लोग कहीं भी जाने के लिए बाय वॉक नहीं जाते, कन्वेंस हमें चाहिए होती है, मर्द हजार बाइक के बगैर कहीं नहीं जाते हैं, ताकि दुकान गली के कोने पर ही क्यों ना हो, लेकिन कोशिश ये होती है कि जी पैदल नहीं बाइक के सहारे चलते हैं, तो इससे भी जो है वो आपकी सेहत मुतासिर होती है। तो ये चंद चीजें हैं जिसे आप फॉलो करें, पहले दिन दूसरे दिन जरा मुश्किल लगेगा, लेकिन तीसरे दिन आप इसके आदी हो जाएंगे और अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारेंगे। तो हेल्थ इज वेल्थ, अपनी हेल्थ का भरपूर ख्याल रखें, इन कुछ चीजों पर जरूर अमल करें, और अगर आप इन चीजों पर अमल कर रहे हैं या करना शुरू करेंगे तो हमें जरूर इत्तला दीजिएगा, क्योंकि वक्त का हमें मुकाबला सख्त है। तो चलें जी, एक ट्रैक को भी शामिल कर लेते हैं, आई होप कि आप इन मशवरों पर जरूर अमल करेंगे। तो इस कम टाइम में एक और ट्रैक को शामिल करते हैं और आते हैं वापस इस ट्रैक के बाद।

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
3: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: हायर T3AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
5: एंड आज ही हायर मिनी LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
6: एंड हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ।
8: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM247365।
9: कुदरत का निजाम तवाजन पर कायम है।
10: वसाइल से ज्यादा आबादी के बोझ से तवाजन बिगड़ जाता है।
11: घर के अफराद और आमदन में तवाजन
12: हमारी जिम्मेदारी है।
13: खानदानी मंसूबा बंदी के तरीकों पर अमल करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
14: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: FM 100, 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
15: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।

0: कुकिंग।
1: बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
0: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें। ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: हायर T3 AC एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। Hire
7: and आज ही Hire Mini LED TV लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं।
8: And
9: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost No Worries।
7: And
10: MCB Bank for Life।
11: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
12: FM247365.
13: Back to back. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkhan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.

0: बिल्कुल जी, और कोई बुलाए तो कहते हैं जाना चाहिए, किसी का भी इनविटेशन जो है वो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको बुला रहा है तो वो मोहब्बत से बुला रहा है, प्यार से बुला रहा है, और अगर बात प्यार और मोहब्बत की इंतहा की है तो फिर फौरन ही भागना दौड़ना चाहिए। और बहुत सारी जगहों पे कुछ ना कुछ ऐसी बात, ऐसी चीजें, ऐसे मामले जिंदगी में होते हैं कि इंसान ये कहता है यार मैं जो हूं ना, मैं इस चीज से थोड़ा सा पीछे रहता हूं। वो वजह ये होती है क्योंकि वो जाहिर सी बात है अपनी बहुत सारी एनर्जी को, अपने बहुत सारे मामलों को भी सेफ रख के चल रहा होता है। कभी कभी हम जिंदगी में बहुत सेफ रहते हुए भी बहुत सारे नुकसान उठा रहे होते हैं, क्योंकि आज बात सेलिब्रेशन की हो रही है, आज बात हो रही है अपनी खुशियों का ऐलान करने की दुनिया में, आज बात हो रही है कि हमें वाकई खुशियों का या अपनी अपनी कामयाबियों का ऐलान करना भी चाहिए या नहीं। बिल्कुल करना चाहिए, और लेकिन अपने काम से करना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस से करना चाहिए। आप किसी एक जगह अगर गिर रहे हैं और किसी दूसरी जगह आप उठ रहे हैं तो ये नाकामी नहीं है, क्योंकि हर जगह पे हर कोई फिक्स नहीं होता। कुछ चैलेंजेस जिंदगी में कभी ऐसे आते हैं कि आप बहुत किसी चीज में एक्सपर्ट होते हैं और पता ये चलता है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि मैं ये काम, फर्ज करें कि कोई बहुत अच्छी चीज है जो आप कुक करते हैं, आप उसे अच्छे से बना लेते हैं, पका लेते हैं, घर में बाहर वालों को बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से पसंद भी आ रही है, लेकिन जब एक वक्त जिंदगी में वो आपसे नहीं अच्छे से बन पा रही, नहीं पक पा रही, नहीं आप उसको उस तरह से कर पा रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसमें फेल हो गए। इसका ये मतलब है कि आप किसी और चीज में उतनी एनर्जी लगा रहे हैं, उतना भाग दौड़ कर रहे हैं कि किसी एक जगह पे आप पूरी तरह से अवेलेबल नहीं हो पा रहे। जो काम जिंदगी में कभी आप कर लिया करते थे, आज अगर उस काम में आप फेल हो रहे हैं, गिर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, संभल नहीं पा रहे, तो ये नाकामी नहीं, ये वो अमल है जिसमें आपको पता चलता है कि यार मैं ये काम कर लेता था लेकिन अब क्योंकि जिम्मेदारियां अलग तर्ज की हैं तो एनर्जी भी अलग तर्ज की हो गई है, प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं, अब कुछ ऐसी चीजें प्राइमरी हैं जो कल कभी प्राइमरी थी ही नहीं।
1: It's 3:15 PM. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें, ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
4: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर ना आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
5: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: FM 100 like. us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: Cool King.
1: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल।

0: अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
1: इंट्रासिव एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNC को तस्लीम करना है।
2: पब्लिक सर्विस मैसेज। शदीद गर्मी के बाद शहरियों से गुजारिश है कि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गैर जरूरी तौर पर बाहर जाने से गुरेज करें, हल्के कपड़े पहने, सर ढांप कर रखें, धूप में सख्त जिस्मानी मशक्कत से बचें और बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का खास ख्याल रखें, ज्यादा पानी पिएं और महफूज रहें। यह अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तआवुन से पेश किया जा रहा है।
3: FM247365

जी जनाब, और बात हो रही है आज सेलिब्रेशन की, बात हो रही है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनमें हमें जिंदगी को आगे सेलिब्रेट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जिंदगी को आगे लेके चलना चाहिए, लेकिन कहां, कैसे, कब, किस तरह और किसके सामने, ये आपको वक्त, हालात, मामला तय करके बताएंगे। और ये आपसे हालात ही होता है जो बेस्ट ट्रेनर होता है आपका, और जब वो बेस्ट ट्रेनर आपको बताएगा कि जनाब आपको कब, कहां, किससे, कैसी चीजें एक्नॉलेज करनी चाहिए, तो बहुत ही मुनासिब तरीके से सारी सारी बातें और मामले हो सकेंगे।

0: कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के ताबुन से पेश किया जा रहा है।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय MCB बैंक फॉर लाइफ।
2: Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365. FM100.
4: 31 साल FM100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
3: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: 91.1 FM, your location for maximum music.
1: In the rhythm of life, rhythm when of you life. Feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on. The music plays on. The music plays on.
2: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
4: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशा।
5: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर
6: MCB1 करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं।

0: PNCB Bank for Life.
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and Ajvi, Higher Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol, Ghar Mein Banaye.
3: And अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
4: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
0: एंड
5: एमसीबी बैंक फॉर लाइफ
0: एंड
6: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: एंड
7: फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
8: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे होशियार रहें मोहतात रहें अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें हुंडी हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है याद रखें दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है हुकूमत पाकिस्तान
9: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया
10: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
11: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 5:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. Ultra big outdoor ke saath. जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी, 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट हायर।
0: बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फाहश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: This program is brought to you by
4: AGS Tubular दिखाए काम, AGS Tubular Battery, दिल को है आराम,
5: and Cool King Hair Oil, जैसे चलता फिरता AC,
6: and आज ही Higher Mini LED TV लाए और स्टेडियम का माहौल घर में बनाए।
7: एंड अगर आप हैं ड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
8: एंड लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
9: एंड MCB बैंक फॉर लाइफ।
10: एंड लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विथ योर डॉक्टर टुडे।
0: एंड
1: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
11: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
12: सामने आप ना कुछ 3 बार मौत देखे
13: टाइम सी मनु ऐसे ही के मैं हूँ कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
14: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
11: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
15: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था वर्क वीजा।
11: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खसूसी टास्क फोर्स का क्याम, मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमित किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफटेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
16: FM 24/7/365

0: Come on.
1: This program was brought to you by MCB Bank for Life. It's 6 p.m. This time check is brought to you by
2: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
3: Cool King.
4: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
5: तुम लोग को बाइक चलानी आती तो चलाते क्यों? जब देखो
6: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
7: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
8: खालिस अज्जा, भरोसे मंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
9: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
10: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
11: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: MCB One Current Account. Har Pakistani ka ek account. जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री एसएमएस अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही एमसीबी वन करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। एमसीबी बैंक फॉर लाइफ।
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
5: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
0: and
2: Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and
3: Aji Higher Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol Ghar Mein Banaye.
0: And
4: अगर आप हैं इंड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
0: एंड
5: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
0: एंड
6: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
0: एंड

0: बड़ा आराम AGS ट्यूबुलर बैटरी, दिल को है आराम।
1: कूल किंग चाय होटल में बैठे हो, चाय गरम, मौसम गरम और डिस्कशन उससे भी ज्यादा गरम। पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट, सबका टेम्परेचर हाई। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
2: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन। 144 Hz पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार। पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी एलईडी टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
3: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबी सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबी जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: एक दुनी दो, दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
6: अगर आप हैं इंड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।
7: इंड्राइव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता। ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इंड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
8: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: MCB1 करंट अकाउंट हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट, जो दे रहा है बैंकिंग की बेशुमार सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे कि फ्री चेकबुक, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स, फ्री इंटरसिटी ट्रांजैक्शंस, फ्री डेबिट कार्ड और बहुत कुछ। तो आज ही MCB1 करंट अकाउंट खुलवाएं और बेहतरीन सर्विसेज का फायदा उठाएं। MCB बैंक फॉर लाइफ।
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
2: किसने कहा था पैसे

0: This program is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
2: and
3: Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
2: and
4: Aaj Hi, Higher Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol, Ghar Mein Banaye.
2: And
5: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें
2: एंड
6: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
2: एंड
7: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे
2: एंड

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Cool King.
3: Boss ki demands ne kar diya dimag ka system hang.
4: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ. कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी.
5: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से. तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना.
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
7: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
6: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
8: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के. आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना.
9: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता. हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी. हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट. हायर.
0: This program is brought to you by
10: AGS Tubular Dikhai Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram,
4: and Cool King Hair Oil, Jaise Chalta Phirta AC,
0: and Aaj Hi, Higher Mini LED TV Line, aur Stadium Ka Mahol, Ghar Mein Banaye. And
11: अगर आप हैं इनड्राइव कार, बाइक या रिक्शा ड्राइवर, तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें.
0: एंड
12: लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके.
0: एंड
13: लिव लाइटर, हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे.
0: एंड

0: PM. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
1: AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: And
2: Cool King Hair Oil. Jaise chalta phirta AC.
0: And Aji Tire Mini LED TV Line. और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। एंड
3: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें।
0: एंड
4: लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
0: एंड
5: लिव लाइटर हैव अ वेट मैनेजमेंट कॉन्वर्सेशन विद योर डॉक्टर टुडे।
0: एंड
6: फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
7: कूल किंग।
8: अबे देख के नहीं चलाता क्या?
9: हम लोग को बाइक चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों? जब देखो
10: हल्का सा टच हुआ लेकिन रिएक्शन फुल एक्शन मूवी, छोटी सी बात लेकिन सीन बड़ा। लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
11: हायर मिनी एलईडी टीवी के साथ 3 महीने की टैप मैड सब्सक्रिप्शन भी विद फ्री इंस्टॉलेशन, 144 हर्ट्ज पिक्चर क्वालिटी जानदार, बनाए हर मैच को शानदार, पावरफुल KEF ब्रिटिश स्पीकर्स और वूफर्स का अमेजिंग साउंड, करे आपको एक्साइटमेंट से सराउंड। 3 ईयर वारंटी और 6 मंथ री रिप्लेसमेंट के साथ आज ही हायर मिनी LED टीवी लाएं और स्टेडियम का माहौल घर में बनाएं। हायर, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज।
12: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
13: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
14: एक दुनी दो दो दुनी चार, सही इंतखाब के इनामात 2500।
3: अगर आप हैं इन ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 ईयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनामात।
14: दुनी दो दो दुनी चार, दुनी दो दो दुनी चार।
15: इंट्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को इंडिपेंडेंट ड्राइवर से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, ड्राइवर्स के एक्शंस की जिम्मेदारी इन ड्राइव पर नहीं होती। इस मुकाबले में शराकत टर्म्स ऑफ यूज और कैंपेन TNCs को तस्लीम करना है।

0: फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल, नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: Ek normal AC is extreme 53 degree heat ka muqabla nahi kar sakta. Higher ka naya Real T3 inverter AC. अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 AC एक्सपर्ट एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
5: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।

0: This program is brought to you by and
1: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for extreme heat. Higher.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान
3: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
4: FM 100 लाइक अस ऑन Facebook.com/FM247365
5: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
6: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: Cool King.
2: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
3: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
4: खालिस अज्जा, भरोसे मन शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज, कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: Cool King.
2: बिजली का बिल देखा, आंखों ने डबल चेक किया, फिर भी शॉक सेम, इसी बात, लेकिन बीपी हाई।
3: लगाओ Cool King हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। Cool King हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
5: हायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
6: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: Higher T3 AC Expert, Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Higher.
7: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है, वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज़ कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज़ कैश है ना।
1: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
2: किसने कहा था पैसे बचा?

0: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
1: Cool King. बॉस की डिमांड्स ने कर दिया दिमाग का सिस्टम हैंग।
2: लगाओ कूल किंग हेयर ऑयल और कूल हो जाओ। कूल किंग हेयर ऑयल, जैसे चलता फिरता एसी।
3: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
4: नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
4: No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। No Frost, No Worries.
6: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज़ कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज़ कैश है ना।
7: एक नॉर्मल एसी इस एक्सट्रीम 53 डिग्री हीट का मुकाबला नहीं कर सकता। हायर का नया रियल T3 इन्वर्टर एसी, अल्ट्रा बिग आउटडोर के साथ, जो अपने फुल BTU से दे 100% कूलिंग एफिशिएंसी 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी। हायर T3 एसी एक्सपर्ट, एक्सट्रीम T3 इन्वर्टर फॉर एक्सट्रीम हीट। हायर।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
7: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Higher.
8: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादेही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। PTA की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
10: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है। जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
11: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
12: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
11: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
13: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं बहुत खाती हूँ।
14: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
11: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम हुई।
13: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
14: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
13: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाएं,
11: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
14: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
11: आइए वेट से आगे का सोचें।
9: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
15: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इबलाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसम वेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt.exe नुकसानदेह साबित हो सकती है। अटैचमेंट खोलने से पहले जरूर स्कैन करें। ईमेल इस्तेमाल करने के बाद हमेशा लॉग आउट या साइन आउट करें। इन खतरनाक आदतों से हमेशा बचें। सरकारी ईमेल को जाती या गैर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल न करें। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले असल URL जरूर चेक करें। क्लिक करने से पहले एक बार जरूर देखें। अपना ईमेल पासवर्ड किसी के साथ हरगिज शेयर न करें। पासवर्ड, OTP या हसास मालूमात ईमेल के जरिए कभी भी न भेजें। हैकर्स अक्सर फौरी कार्रवाई, धमकी, लालच या झूठे वार्निंग साइन जरूर देते हैं ताकि आप घबराकर फौरन क्लिक कर दें। अगर कोई ईमेल बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा पुरकशिश और गैर मामूली तौर पर मशकूक लगे तो एक बार जरूर रुक जाएं और इसकी तस्दीक करें। फिशिंग ईमेल से कैसे बचें? अपने आप को और अपने अदारे को महफूज रखने के लिए धमकी आमेज या जज्बाती जुबान वाली ईमेल से मोहतात रहें। नामालूम या शॉर्ट लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करें। भेजने वाले का मुकम्मल ईमेल एड्रेस जरूर चेक करें। अटैचमेंट से खासतौर पर मोहतात रहें, खुसूसन exe.bat.vbs.msi और दीगर एग्जीक्यूटिवल फाइल से लोगो और ग्राफिक्स आसानी से जाली बनाए जा सकते हैं। इन पर अंधा एतमाद ना करें। किसी भी मशकूक ईमेल की फौरन अपने अदारे की IT टीम को इतला करें। आपकी होशियारी ही पहली दिफाई लाइन है। होशियार रहें, महफूज रहें। ये पैगाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम, PTA।
16: ये मुफादे आमा का पैगाम आप तक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
17: FM 24/7 365
18: 100
19: Evening Drive Time with

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: AGS Tubular Dikhai Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
0: This program was brought to you by
2: Tufaan hai.
3: Higher T3 AC Expert. Extreme T3 Inverter for Extreme Heat. Higher.
4: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
5: 100 FM
6: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset Installment Program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
5: 100 FM.
7: Ab milenge tamam network ke loads aur packages ek app par. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के, आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
0: This program is brought to you by
8: Higher का नया No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग No Frost No Worries
9: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
10: FM247365
11: FM 100
12: 31 साल FM 100 आपकी आवाज़ अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान

0: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Higher Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving No Frost, No Worries
3: FM 100 Like us on facebook.com/FM247 365
4: FM 247 365

0: यहाँ पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: Apple, Samsung and Nothing phones on easy installments. You heard that right. Postpay by Jazz Handset installment program ke saath aaj hi apna naya premium 5G handset hasil kare. Aur payment 12 mahino ke aasan installments mein. Visit your nearest Jazz Experience Center today and get your latest smartphone. Let go with Postpay by Jazz.
3: 100 FM.
4: Ab milenge tamam network ke loads aur packages ek app par. अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
5: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
6: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
7: Like us on facebook.com/fm247365.
8: FM247365.
9: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے، ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے۔ ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے،

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
3: This program is brought to you by
4: Higher का नया No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost, No Worries।
5: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें। यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है। मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
7: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے،
8: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے۔
9: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
10: ہماری ذمہ داری ہے۔
11: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔
6: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: Like us on facebook.com/fm247365
12: Let's celebrate
13: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
14: Assalamu alaikum Pakistan, let's celebrate the journey. This is your

your location for maximum music.

0: हेलो माइक चेक 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम मेरा अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान सभी सुनने वालों को आयाज अहमद की जानिब से आदाब, क्या हाल है जनाब? ठीक है, खैरियत से हैं, सुन रहे हैं FM 100 और जनाब साथ साथ मैसेजेस आप लोग करते हैं KHR स्पेस, टेक्स्ट करते हैं और सेंड कर देते हैं 3636 पर। अच्छा जनाब, ट्यूसडे और ट्यूसडे वाले दिन मिले जुले ज्यादातर नए गाने होते हैं, इंग्लिश ट्रैक भी होते हैं, अरबिक भी होते हैं, तो हर तरह की ट्यूशन जो सुनने को मिल सकती है। और पहली दफा जो सुन रहे हैं उन्हें बताऊं कि बहुत आसान तरीका, अगर आपका दिल चाह रहा है मुझे मैसेज करने का, KHR स्पेस टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर। और अगर आप ड्राइव करें इत्मीनान सुकून हमेशा अपने साथ, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं और दूसरों का खासतौर पर ख्याल रखना। जनाब बिल्कुल शामिल करेंगे आप लोगों के मैसेजेस भी, लेकिन आगाज एक खूबसूरत सी ब्रेक से।
1: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
2: This program is brought to you by
3: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving, no frost, no worries।
4: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी, आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
5: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए, कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा, फैसला आपके हाथ में है।
5: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365।
8: यमी,
9: जबरदस्त,
8: प्यास तो सुनो यार।

जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस 3636 पर। भाई जनाब, तो आगाज करेंगे इस खूबसूरत ट्रैक से और फिर आपके मैसेजेस और आपसे गपशप।

0: Volume with Ayaz Ahmed. 9 to 11, Sunday to Friday. It's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जना वेलकम बैक सुन रहे हैं एफएम 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी पहुंचना शुरू हो गए भाई। अच्छा जनाब बिलावल गिजरी से आज भाई आपको सलाम, सुंबल जी, कादिर भाई, रुबाब जी और तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू वेरी मच बिलावल। आप बताएं आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं तो हर वक्त करता रहता हूं। और अस्सलाम वालेकुम, आपके क्या हाल है? मेरे हाल अल्लाह का शुक्र है ठीक हूं। बैकग्राउंड सुनकर हमारा दिल खुशी से तेज धड़कता है जानी, आ गया हमारा, हम हैप्पी होते हैं। वेटिंग फॉर यू जाने जा, हंसी है फिर उसके बाद मैं क्या करूं। बड़ी मेहरबानी, वालेकुम अस्सलाम। अय्यूब आफरीदी भाई आ गए, नाइस अयाज, आपको और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम अय्यूब भाई, कहाँ घूम रहे हैं? कराची आ गए या अभी भी बाहर घूम रहे कहीं? नायला कह रही है प्रिंस अयाज आपको सलाम। अरे कहां से प्रिंस, मोहब्बत है नायला जी आपकी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और कह रही खुश रहे, मुस्कुराते रहे बिलावल और तमाम निसर को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जनाब मुश्क लैला भी आ गई। मुश्क जी कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत वबीयत सट सट है? चलो जनाब खुश हो रही है भी, चलो ठीक हो गया। बैकग्राउंड म्यूजिक भी पसंद आ रहा है इनको। फरीन शहजादी ने भी सबको सलाम कह दिया। अशरफुल मखलूकात को मेरा सलाम। ठीक हो गया? वालेकुम सलाम सबकी जानिब से। अच्छा जनाब गयासुद्दीन बलमन आ गए हो, मैं क्या क्या हाल है? वालेकुम सलाम, सबको सलाम दे दिया इन्होंने। और नया साल भाई आपको भी मुबारक, इस्लामी नया साल भाई सबको मुबारक हो। और संजीदा जी भी पहुंच गई हैं। संजीदा क्या हाल है आपकी? इतने अच्छे अल्फाज से आप वेलकम कर रही हैं। शहजादे खुश आमदीद, कैसे मिजाज, कैसा मूड? अब मूड यहाँ आ गया हूँ तो जरा फिट हो गया है। और आपकी बातचात में हम भी खुश और मजे में हैं, ये अच्छा हो गया। गजलों और गीतों ने शो को लाखों चांद लगा दिए थे। अच्छा कल के शो ने? बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। आज भी सुने, आज भी कोशिश की हुई है, जरा अच्छे अच्छे ट्रैक्स, जरा नए भी होंगे और पुराने भी होंगे, पुराने कम जरा लेकिन नए ज्यादा। बिल्कुल जनाब मैसेज करते रहे। और टाइम मुझे कह रहा है कि 2 मिनट की ब्रेक की तरफ जाए। ठीक हो गया जी, तो 2 मिनट की ब्रेक है, सुनते रहे, मैसेज करेंगे KHI स्पेस, टेक्स्ट करेंगे और सेंड करेंगे 3636 पर।
0: Turn it up, it's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
1: Star of the show.
0: Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday.
1: Full volume.
0: It's a party that won't end. On FM 100, turn it up, let the music begin.
1: FM 100's where the vibes are proud.

0: अपने कमाल बैकअप से AGS ट्यूबलेस दिखाए काम, इसलिए हर पाकिस्तानी के दिल को मिले पूरा आराम। AGS ट्यूबलेस बैटरी, दिल को है आराम।
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
3: This program is brought to you by
4: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost, No Worries.
3: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
5: Active.
6: Yummy.
5: Adorable. Seven.
6: ये प्यार तो सुनो यार।

0: है जनाब,
1: सुन रहे हैं 100 और साथ साथ मैसेज आप लोग कर रहे हैं 3636 पर। अच्छा जनाब, और भी मैसेज आ गए, बिल्कुल शामिल करता हूँ, लेकिन जरा एक ट्रैक खूबसूरत सा ड्राइव करें तो इत्मीनान से इस गाने को सुने और थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर कर लें, मजा आए शायद।

अंजना वेलकम बैक। और रेहान के भी मैसेज आ गए 3636 पर, हर रोज सुनता हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है जनाब, गानों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। चले जनाब बड़ी मेहरबानी रेहान भाई। अयूब आफरीदी कह रहे हैं अयाज भाई कल से कराची में हूँ। अयूब भाई को वेलकम कहेंगे भैया, कराची तशरीफ ला चुके हैं और अब देखते हैं भाई। सलाम अयाज भाई, नाम नहीं पता लेकिन सलाम लिख दिया भैया। कादिर बख्श बलोच भी आ गए, अदा कादिर ठीक हो खैरियत से बाबा, गाना बलोची है आज तो, थोड़ी देर में लगाता हूँ। अयाज भाई आपको और सुनने वालों को सलाम, कैसे हैं आप? बिलावल भाई और संजू जी को सॉन्ग डेडिकेट कर दें, ठीक हो गया, नेक्स्ट गाना उन्हीं को डेडिकेट कर देता हूँ भाई। अच्छा जनाब, और इसके अलावा आरजी सुन रही है असमा हुसैन। असमा क्या हाल है आपके? ठीक है खैरियत से है? और भाई आज अकेले नहीं सुन रही, आज मेरी दोस्त इशाल भी सुन रही है। इशाल जी कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत तबीयत सेट है जनाब? अस्मा जी को भी बस अपने शो में एक दो दिन बाद बुलाते हैं और इनसे जरा गपशप करते हैं। अच्छा जनाब, नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं और वो है कैसे, हाय हाय।

0: Monday to Friday, it's a party that won't end.
1: Oh, so loud.
2: जनाब और क्या बात है जनाब, बस नारा भी सबको कहना है टाइटल क्या है, पर टाइटल की जरूरत नहीं संजीदा, बस इसी प्रोग्राम में सुना करो। मिक्स है ये, मैशअप भी है, दो तीन गानों को मिला के ये गाना बना दिया है, वैसे मजबूर है गाने का नाम, टाइटल जो है इसका। बाकी ये कि आप इसमें सुनेंगे तो ज्यादा सही लगेगा। अयूब आफरीदी कह रहे हैं अयाज भाई कभी चुड़ैल को सामना हुआ है? सरकार अभी तक तो अल्लाह ने बचाया हुआ चुड़ैलों से, लेकिन ये है कि जो हालात चल रहे हैं किसी टाइम हो भी सकता है। भाई आप बताएं आपका सामना हुआ है कि आपका तो खैर होता रहता है, ज्ञानी आदमी है, चुड़ैलों में से जिन भी निकाल लेते हैं, जिन में से चुड़ैल बता क्या बस कुछ भी कर सकते हैं। अयूब भाई कादिर बख्श बलोच कह रहे हैं अयाज भाई बिलावल नदीम भाई के शो में मैसेज क्यों नहीं करते, जरूर पूछिएगा, मैंने पूछ लिया भाई। बिलावल भाई क्यों नहीं मैसेज करते भाई नदीम भाई के शो में, मसरूफ होगा या कोई नींद आ जाती थी उस टाइम। नाइस सॉन्ग हमारी जानिब से आपके लिए एम यूसुफ जई, चले जी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। फरीन शहजादी का भी मैसेज आ गया, कह रही है भाई क्या ब्रेकें कम की जाए, आपको सुनने का मौका हमें ज्यादा मिलना चाहिए। कि अरे नहीं करो सरकार, बड़ी मुश्किल अल्लाह अल्लाह करके ब्रेकें आ रही है और तुम उसमें भी ब्रेक डलवा रही हो, नहीं करो भाई। और गहाए मेरा फेवरेट सॉन्ग, चले जनाब इनका भी ये ट्रैक फेवरेट है। अच्छा भाई अब जो मैं ट्रैक प्ले करने वाला हूँ वो अगर मेरे ये शो किसी चाय के ढाबे पे जो लोग सुन रहे हो तो उनको मैं डेडिकेट करने वाला हूँ, जो कड़क चाय बना के पिला रहे हैं उनको मैं ये गाना डेडिकेट करने वाला हूँ, और वो अपने होटल में कभी कोई गाना लगाना चाह रहे हो और समझ नहीं आ रहा कौन सा गाना लगाए, और ढाबा भी चाय का है और वो भी कड़क चाय का, तो ये ले सर।
3: Let's go.

क्या म्यूजिक है, जबरदस्त, सुनने में मजा आ रहा है और चाय कड़क, वाह वाह वाह क्या बात है। किसी टाइप में भी गाना बन सकता है, कोई भी मौजू हो जाए, लेकिन म्यूजिक दिया भाई फिट किस्म का। चले जनाब बहुत शुक्रिया। आयशा का मैसेज आ गया, कह रही है अस्सलाम वालेकुम अयाज, कैसे हैं तमाम सुनने वालों को सलाम। वालेकुम सलाम। असगर साहब क्या हाल है, खैरियत से हैं? असगर साहब कह रहे हैं मेरा बड़ा वास्ता पड़ा है चुड़ानो से। सर आप डायरेक्टर आदमी है, आपका वास्ता नहीं पड़ेगा तो किसका पड़ेगा, ऊपर से चाय भी कड़क।

0: इरफान साहब आ गए हैं और एक ये अक्सर मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लाइव क्यों नहीं आ रहे फेसबुक पर, यार इसमें मजा आता है, वो जरा कुछ गाने वाने में लगा लेता हूं तो फेसबुक वालों को जरा एतराज हो जाता है कि क्यों लगा रहे, कॉपीराइट वाला चक्कर होता होगा ना, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जाता फेसबुक पे। क्यू शीट जरा फिट किस्म की लगनी चाहिए और उसके चक्कर में ऐसा ना हो कि क्यू शीट खराब हो जाए, तो इसलिए मैं लाइव नहीं जाता, जाता हूं लेकिन कम कम। अच्छा जनाब, और गयासुद्दीन बलबन कह रहे हैं वाह सॉन्ग, चाय गरम, वाह वाह वाह पसंद आ गया भाई, चाय गरम पसंद आ गया भाई सबको, और संजीदा जी को भी लगता है चाय, आप भी शौकीन है चाय की भाई, जबरदस्त सॉन्ग। अच्छा जनाब टाइम चेक, और चार मिनट की ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix
2: laga aur bhul ja. अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से, तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
4: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर, अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के, आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
6: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी, मजहबी फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
8: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। سروس کال کرنے کے لیے درج سیل کوڈز ڈائل کریں، جیز صارفین کے لیے *275#، زونگ صارفین کے لیے *4004#، یو فون صارفین کے لیے *6611#، اور ٹیلینور صارفین کے لیے *342#۔ اپنا بیلنس محفوظ رکھیں اور غیر ضروری چارجز سے بچیں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم پیٹیے۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
9: Facebook.com/FM247365
10: Active, yummy, adorable,
11: zabardast.

जनाब कुछ जरा अचानक पुराने गाने भी शामिल कर देता हूँ ताकि जरा नए गानों के साथ साथ पुराने गानों का तड़का भी लगता रहे। अच्छा जी, मैसेजेस पहुंच रहे हैं 3636 पर। अच्छा जी, बिलावल कह रहे हैं, कादिर भाई मेरा ख्याल है कि मैं किसी एक के साथ वफादार रहना चाहिए बंदे को। अरे बिलावल भाई, प्यार है आपकी मोहब्बत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, सारे हमारे दोस्त हैं, सारे प्रोग्राम आप लोगों के लिए होते हैं, और वफादारी क्या यार, वो भी हमारे अच्छे दोस्त हैं। और आरजेस को भी आप सुने, बहुत अच्छा, मैं कभी भी माइंड नहीं करता भाई इन चीजों को, सारे आरजेस आप लोगों के लिए आते हैं, मेहनत से शो करते हैं और मेहनत से जो है ना वो क्यू शीट्स भी बनाते हैं, तो हर एक शो का ना अपना फ्लेवर होता है। तो बहरहाल, लेकिन आपकी इस बात से मुझे अच्छा लगा, वैसे वफादारी निभाइए भाई, निभाइए, क्या बात है, लेकिन मैं माइंड नहीं करता, आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं गुड एंड गुड आईवा वेरी नाइस सॉन्ग एम यूसुफजई के फिर मैसेज पहुंच गए। और इसके अलावा सर, रात को आपका शो पूरा नहीं सुन सका था, मेरे दोस्त जल्दी आ गए थे और हम लोग दो दरिया चले गए थे। अरे बिलावल भाई मजे हैं, फुल टाइम पिकनिक बना रहा मेरा भाई, लेकिन जरा एहतियात से जाया करो। अच्छा जनाब, एक और जरा ट्रैक शामिल करते हैं अच्छा सा, और वो है कैसे

वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी। और बिलाल भाई ने बड़ा कोई गुस्से से मैसेज किया, उन्होंने कहा यार आप पेट्रोल के हवाले से क्यों नहीं ज्यादा बात करते, अभी तक पेट्रोल महंगा है, जबकि वादा ये किया गया था जो ही इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल कम होगा तो। हाँ बात सही, बिलाल भाई बात सही, बिलाल भाई बात सही, बिलाल साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। बाकी मुझे भी याद आया कि वो जो साहब थे जिन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, वो कह रहे थे भाई बस जैसी होगा हम उतनी पूर्ति के साथ जो है वो हम कम भी करेंगे। तो भैया पूर्ति दिखाओ, किथे रह गई यार ये लोग। वैसे एक बात है, बात कुछ और करते हैं और होता कुछ और है, फिर आवाम बेचारी परेशान होती है, हमसे भी रिक्वेस्ट कर रही होती है कि भाई आप बोले, तो भाई हम बोल सकते हैं लेकिन अमल तो उन्होंने करना है, लेकिन फिर भी ठीक है हमारा फर्ज है कि बोलना। तो भैया इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम आ गई, मेरे ख्याल से अभी भी इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है दोबारा बढ़ जाए, तो बार बार क्या आवाम को तंग करना। चलिए जनाब मैंने तो अपना हिस्सा थोड़ा सा डाल दिया, अब देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। अच्छा संजीदा कह रही है भाई बिल्कुल तड़के वाली बात अच्छी की आपने और वफादारी वाली बात भी अच्छी है। संजीदा जी मैं कोशिश करता रहता हूँ अच्छी बातें ज्यादा करूं, बड़ी मेहरबानी, आपको बातें पसंद आ रही है। भाई जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने, और वो है कैसे

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशन के लिए जैज कैश है ना।
4: facebook.com/fm247365 fm247365 fm100 31 साल fm100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान,
5: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, पाकिस्तान
6: एक्टिव
7: यम्मी
6: डॉरबल जबरदस्त।
8: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 और साथ साथ मैसेजेस भी कर रहे हैं 3636 और शहजादी जी बहुत शुक्रिया गाने पसंद करने का। मेरी जाने जा तू नेड़े नेड़े आ, आप सॉन्ग लाजवाब होते हैं। चलिए जी गाने इनको भी पसंद आ गए, चलिए बहुत शुक्रिया। एसएम नाजमाबाद कराची से, एसएम भाई क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं। सलाम मोहब्बत, नया साल मुबारक। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। क्या कहने एसएम भाई, एसएम भाई पूरा नाम तो बताएं कौन है भाई एसएम? अच्छा भाई जो लोग लाहौर जा रहे हैं पंजाब जा रहे हैं एहतियात से ख्याल से जाइएगा भाई, यार बड़ा अजीब सा वाकियात हो रहे हैं यार पंजाब में भी। सीसीडी वाले भाई उनसे खास तौर पे जहां देखें आपने वो कट लेना है फौरन। यार छोटी मासूम बच्ची को उन्होंने देखे यार, तो भाई जरा एहतियात रखें, ख्याल रखें, रुकने का कहें तो रुक जाएं भाई, उनके सामने कोई मुकाबला नहीं कर रहा। लेकिन यार मैं उनसे कहूंगा ऐसे कोई डाकू भी हो तो आप तरीके से पहले पकड़ने की कोशिश करें, ना कि डायरेक्ट गोलियां आपने। और मैंने गाड़ी देखी, गाड़ी उन्होंने गोलियों से बुरा हाल कर दिया उसका। भाई कोई तरीका होता है, मैं क्या कह सकता हूं इस बारे में। तो भाई अपना ख्याल रखें, जाएं रुकने का कहें तो आपने लाजमी रुकना है, ऐसा नहीं है कि मुकाबला शुरू कर दें। राज जनाब नेक्स्ट ट्रैक की जाने, और वो है कैसे

भाई जनाब क्या जबरदस्त ट्रैक और गाने, कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी आपको सारे सुना दूँ। एक और जबरदस्त ट्रैक और उसके बाद वापस आते हैं, मैसेजेस पढ़ते हैं जो आप लोग कर रहे हैं, क्या चार्ज पे टेक्स्ट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं 3636 पर।

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed.
1: जी और ये मैं एफएम आता हूँ यार, देखिए आप 10:11 हो गए, यानी टाइम इतनी स्पीड हो रही होती है, मुझे ऐसा लगता है एफएम पे कुछ ज्यादा ही है जरा इस टाइम तेजी से गुजरने का। अच्छा जी, और फरीन शहजादी भाई गाने फुल टाइम पसंद कर रही हैं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बिलावल क्या कह रहे हैं? सर नदीम भाई बहुत नाइस है, मैं आपका शो सुनकर दोस्तों के साथ घूमने। अबे तुम डेली चले जाते हो, कोई एक दिन रेस्ट भी कर लो, घर वालों को भी टाइम दो, घर वाले भी कहेंगे बिलावल हमारे साथ भी टाइम गुजारो, और फिर 3 वापसी होती है, ये भाई आपकी डेली की रूटीन है। और आप जाके करते क्या हो यार, जॉब वॉब है तो फिर तो एक अलग बात है, लेकिन खाली जाके समुंदर को देख रहे हो और मछलियां ताड़ रहे हो, ये तो फिर गलत है। अच्छा जनाब, अस्मा जी क्या कह रही है? कह रही है संजू का शुक्रिया बता देती है टाइम से। आपकी संजू आपका एहसान, आप आरजे को जो है वो टाइम बतानी है, और आरजे का भी आपका भी एहसान भाई, आप लोग हमें सुन रहे हैं यार। मैं एक बात कहूंगा, एक आरजे दूसरे आरजे को कभी बर्दाश्त करता है, अगर मैं तो ऐसा नहीं हूं, लेकिन मैंने देखा है वैसे, एक आरजे अगर क्यू शीट बना रहा है दूसरा वाला यार इसकी फारिंग मेरी वाली अच्छी, ये होता है ये चक्कर। लेकिन अगर आरजे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो फिर एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे थे भाई, ये वाले गाने डाल, ये वाले गाने बनाओ, इस तरह वाले भी देखे मैंने। अच्छा जनाब, एक और ट्रैक और उसके बाद क्या है, 1 की ब्रेक, फिर वापस आते हैं, सुनते हैं FM 100, मैसेज कर रहे हैं KHR स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर।

भजन आप सुन रहे हैं FM 100 और साथ ही साथ मैसेजेस भी पहुंच रहे हैं। असगर साहब जो है ना फौरन मुझे फोन कर देते हैं और हर बात का जवाब भी दे रहे होते हैं। कह रहे हैं हर जलने वाली चीज राख हो जाती है। क्या खूबसूरत पते की बात बता दी आपने सर, क्या कहने। अच्छा जनाब, इसके अलावा अमरीन जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम की इतनी तारीफें कर दी आपने। सर मैं तो सिर्फ गाने वैसे कोशिश कर रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी गाने सुनाओ और अपनी बातें जरा कम। लेकिन अमरीन जी बहुत शुक्रिया आपका। बिलावल कह रहे हैं सर मैं भी फुटबॉल को लाइक करता हूँ। भाई मैं भी सिर्फ वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, ये जो होते हैं ना लीग मैचेस जो होते हैं या कोई जो लीग्स के हो रहे होते हैं ये मुझे इतने कुछ अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन फीफा वर्ल्ड कप जो है ना ये मैं बड़े शौक से देख लेता हूँ। अच्छा जी, जुनेद जमशेद के गाने संजीदा जी को बहुत पसंद है जी। वाह वाह वाह, क्या कहने। इसी बात पर ये ट्रैक जो है ना संजीदा जी आप ही को डेडिकेट कर देता हूँ, और वो है कैसे,

0: right back after a short commercial break.
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का ज़िया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैज कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैज कैश है ना।
3: FM 24/7 365
4: Active, yummy,
5: adorable, zabardast.
4: Ready hai pyaar to suno yaar.

है जनाब, वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100। और इतने प्यार से मैसेजेस पहुंच गए, वाह वाह वाह वाह, क्या बात है जनाब। अनाया के मैसेज पहुंच गए भाई, पहली दफा हमें सुन रही हैं, और क्यू शीट और आपके बात करने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। अनाया जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। नायला कह रही प्रिंस अयाज प्लेलिस्ट जबरदस्त हो, मैं कह नायला तुसी भी जबरदस्त हो। सलाम, कैसे हैं सबको? सलाम जरीनूर, वालेकुम अस्सलाम। और संजीदा जी को गाना पसंद आ गया, ये क्लासिक वाला। चले जनाब, वाकई में मजा है इस गाने में, जो क्लासिक गाने की अपनी बात है। असगर भाई एहतियात थोड़ा, ऑन एयर भाई फोन उठाना मना है सख्ती के साथ, लेकिन फिर भी मैं मोहब्बत में उठा लेता हूँ, तो उसी भी कुछ मोहब्बत का को इजहार करें आप, थोड़ा कम फोन करें, ऐसा ना हो तो पेनल्टी शनल्टी लग जाए, समझ रहे कि नहीं। लेकिन प्यार है सर आपका भी, लेकिन मेरी मजबूरी भी समझे दोस्तों, इतना भी ना चाहो कि दम निकले। अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, यूसुफ आपोस से, तमाम सुनने वालों को सलाम, FM 100 की तमाम फैमिली को सलाम, आंटी चाची रूसा गुलबानो, तमाम डॉक्टर्स और इमरान भाई ताब लाला और गुफरान भाई, सबको सलाम। चले जनाब, सलाम वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, अब जरा नेक्स्ट ट्रैक की जानिब, ये भी बड़ा कमाल गाना, जरा चेक करें आप।

जनाब वेलकम बैक। और भाई फैसलाबाद से नौरीन तौसीफ भी आ गई। नौरीन कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम अयाज भाई, मिजाज शरीफ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। और इसके अलावा ढेरों दुआएं प्यार दे दिए, तमाम ने सर को सलाम भी कह दिया, वालेकुम अस्सलाम। और कह रही मैं, मेरा डिनर टाइम भी होता है आपके शो के दौरान, अभी फ्री हुई हूँ शो सुन के। चले ठीक हो गया, सॉन्ग्स बेहतरीन लाजवाब है, वाह क्या बात है। अस्मा साहिबा को, संजीदा बहना को सलाम, अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कर दिया यार, सारे गाने इन दोनों को मैंने डेडिकेट कर दिए, फिक्र न करें आप। संजीदा जी को तो गाने पसंद आ रहे हैं, और अस्मा जी बहुत शुक्रिया, आपको भी ट्रैक पसंद आ रहे हैं। यार एक इंस्ट्रूमेंटल मुझे नजर आ रहा है, और ये मेरा एक दौर में बड़ा फेवरेट इंस्ट्रूमेंटल था, स्पेशली गाड़ी अगर ड्राइव कर रहे हो और उसमें ये प्ले कर रहे हो, बहुत ही मजा आता था। जो सिट्रानी, कमाल गिटारिस्ट नहीं है, और इनका ये जो इंस्ट्रूमेंटल है ना, बहुत ही हिट हो गया था उस दौर में। चले जनाब एंजॉय करें, मैसेजेस करें, KHR स्पेस टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर।

0: हुआ जनाब, सुन रहे हैं FM 100 अयाज अहमद के साथ गयासुद्दीन बलबन। क्या बात है, पुराने दौर में तो नहीं चले गए। अच्छा जनाब, बिलावल कह रहे हैं भाई एक फास्ट ट्रैक प्ले कर दे। कौन सा फास्ट और कितना फास्ट हो मेरे भाई। अच्छा जनाब, अरे पाकिस्तान चौक से जहाज भाई किथे रह गए हो तुसी, यानी काफी अरसे के बाद सुन रहा हूँ, तबीयत सही नहीं। अरे भाई इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको सही करे, आमीन सुम्मा आमीन। ड्रामे भी देख रहे हैं। हाँ ये बात सही किया कर रहे, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एजाज में फिक्र ना करें आप। अच्छा जनाब, इसके अलावा अमरीन जी के फिर मैसेज आ गए, आए हाय अमरीन जी, खुश रहे आप, गाने पसंद आ रहे हैं। और क्यू शीट के हवाले से तो संजीदा जी भी और अजमा जी भी तारीफ करी, तो अक्सर लोग उससे पूछ रहे थे भाई कैसे बनाते हैं आप, तो मैं आपको बताऊं, एक ये इंटरेस्ट की बात होती है। अगर आपको दिलचस्पी है, शौक है कुछ, ये पहले से आपकी लिसनिंग अच्छी है, तो आप बना लेते हैं। वरना कुछ चार्जेज ऐसे होते हैं जिनको गानों से कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, बस वो अपनी बातें करने, अपना लेक्चर सुनाने, अपने आप को साबित करने में कि भाई देखो मैं कितना अच्छा आर्जी हूं। गानों से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस जो किसी ने बना के दे दी वो प्ले कर दी। तो फिर वो इस तरह की क्यू शीट फिर ऐसी होती है, लोग उसकी तरफ इतने तवज्जो नहीं देते। लेकिन जो दिल से बनाई हुई होती है, अब मैं अपनी तारीफ करने वाला हूं, तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, मेरा मकसद ये है कि हमें खुद भी, मुझे भी शौक है, इस वजह से भी शायद आपको सही लगती है। अच्छा जनाब, ओहो गाना नेक्स्ट मैं प्ले करता हूं, लेकिन उससे पहले है भाई छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, मैसेज करेंगे 3636 पर।
1: अब तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स जैस कैश ऐप से आसानी होंगी, जैसे FPR टैक्स, ट्रैफिक चालान, पासपोर्ट फी, गाड़ियों के टोकन टैक्स या नादरा फी, घर बैठे जैस कैश से। तो ना कोई दफ्तरों के चक्कर और ना कोई टाइम का जिया, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों की पेमेंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: 100 FM।
3: अब मिलेंगे तमाम नेटवर्क के लोड्स और पैकेजेस एक ऐप पर। अभी जैस कैश डाउनलोड करो, पाओ इंस्टेंट लोड, एक्सक्लूसिव ऑफर्स और डिस्काउंटेड पैकेजेस, वो भी बिना किसी रिटेलर के। आसान और इंस्टेंट पैकेज एक्टिवेशंस के लिए जैस कैश है ना।
4: पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फूट उसका नौजवान तलवार। पाकिस्तान की 61% आबादी 18 से 35 साल की उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है, जो एक मुनफरिद आबादियाती सरमाया है। नौजवान हमारी मईशत की धड़कन और हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। अहम उनके खिलाफ एक खामोश जंग जारी है, और वो है मुनशियात का बेदरेज। मुनशियात फरोश माफिया अच्छी तरह से जानती है कि कहां वार है। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां उनका हदफ है, जहां वो नौजवान जहनों को खतरनाक नशा आवर अशिया से गुमराह कर रहे हैं। यही वो मकाम है जहां इंसदाद मुनशियात फोर्स के एन एफ वाजे मकसद और मजबूत इरादे के साथ मैदान

0: एप्लीकेशन पर। मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाकें, आइए इस खतरे के खिलाफ मुत्तहिद। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान। एएनएफ का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365 FM 247365
2: Active Yummy Adorable Zabardast
3: भाई जनाब सुन रहे हैं आप आज अहमद को FM 100 पर। और बिलावल भाई ने जरा फास्ट गाने की रिक्वेस्ट कर दी है, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है फास्ट, जरा चेक करें भैया।

भाई जनाब सुन रहे हैं FM 100। सलीम भाई कैसे हो? अयाज भाई मैं अभी थोड़ी देर पहले तारिक रोड पर FM के स्टूडियो के करीब था और शो भी सुन रहा था, सोचा आपसे मुलाकात कर लो, थोड़ा हुलिया खराब था। अरे सलीम भाई आप वैसे इतने स्मार्ट आदमी, भैया आए थे मेरी बर्थडे पे और इनसे मुलाकात हुई थी, खूबसूरत आदमी है सर आप, जिस हुलिया में भी हो तो आप अच्छे लगते हैं। बिलावल कह रहे हैं सर गुड सॉन्ग जबरदस्त। लो भाई ये भी चेक करो, लेकिन अस्मा जी कह रही है कि इतना तेज म्यूजिक होता है पैगाम रह जाता है। अस्मा जी जिसने पैगाम वसूल करना होता है वो रिसीव कर ही लेता है।

हाँ जनाब क्या बात है, टाइम जरा तेजी से खत्म हो रहा है और मैं थोड़े थोड़े गाने सुना रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक मैं आप तक पहुंचा दूं। एक और खूबसूरत ट्रैक

राइट जनाब, जबरदस्त ये ट्रैक। संजीदा जी बहुत शुक्रिया गाना पसंद करने का। इसके अलावा भाई एक और ट्रैक था जो मैं आज प्ले करने से रह गया, और बलोची गाना था, थोड़ा सा सुनाता हूँ, बल्कि इसी पे ही एंड कर देते हैं। हाँ जी, इसी पे एंड कर देते हैं। राइट जनाब, अपना बहुत ख्याल रखें, और अब शो करने आएंगे हमारे बहुत ही प्यारे नदीम अख्तर भाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अयाज अहमद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज, रब राखा, खुदा पामान।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू।

0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो, तू मेरे प्यार का गीत है, तू मेरे दिल की आवाज है, नाहिद अख्तर की आवाज। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रैक आया होगा पसंद। मैसेजेस आपके बेतहाशा आ चुके हैं। इससे पहले कि मैं टॉपिक की जानिब जाऊं या कोई सवाल फ्लोट करूं, मैं पहले मैसेज पढ़ूंगा कि जिनका मैसेज फौरन नहीं आता आजकल, संजू का मैसेज है, क्योंकि इससे कोई ना कोई टॉपिक आ जाता है, कोई ना कोई बात ऐसी निकल आती है, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खुश आमदीद नदीम, कैसे मिजाज और क्या हाल है, आफियत की अनगिनत दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। भरोसे पीर का प्रोग्राम काबिले तारीफ था, उसकी वजह प्रोग्राम से हटकर मौजूआत पर बहुत ज्यादा बात नहीं की जो उदासी या जाती बात लिए होती है, हल्का फुल्का जिक्र तो चल सकता है, बहुत ज्यादा खुश्क मौजू प्रोग्राम को अपनी डगर से हटा देता है, यानी कि समझ रहा हूं ना मैं। हाँ, जिससे सुनने वाले लिसनर खामोशी इख्तियार करके अपनी दिलचस्पी महदूद कर लिया करते हैं। कल ऐसा नहीं हुआ था, आपका शरारती लहजा, गुफरान और समी की चिटचैट ने भी ज्यादा वक्त नहीं लिया था, जो भी शामिल प्रोग्राम लिसनर्स थे भरपूर शिरकत से लाखों चांद लगा दिए। दुआ है कि आज का प्रोग्राम भी तमाम तर रानाइयां लिए हुए जिंदगी की सांसों और प्रोग्राम के अख्तिताम तक साथ हूं। वैसे ये पगली छुड़ैल और समी की नोक झोंक से चुटकी की याद ताजा हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी, यानी कि समझ रहे ना, हस्ती का सामा हो गया। और दो इंसान जब एक दूसरे के दुख, खौफ, उम्मीद और खामोशी को समझने लगते हैं तो उनके दरमियान एक ऐसा ताल्लुक पैदा होता है जो जिस्मानी ताल्लुक से कहीं ज्यादा देर पा होता है, ये रूहानी ताल्लुक होता है। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, अजब पागल सी लड़की है मेरी, खामोश आंखों में महकती मुस्कुराती गुनगुनाती, ख्वाब से मोहब्बत के सभी रंगों से वाकिफ है, मगर अनजान बनती है वो मेरी, बेकरारी के सभी मायने समझती है मगर खामोश रहती है, उसे मालूम है कि ये बेतहाशा बोलने वाला जमाना, जमाने भर के किसे दास्ताने उससे कहता है, हर एक मौजू पर उससे बात करता है, वो इसलिए कि मैं मेरी सोचों की महवर, वो इसे कह नहीं सकता मेरी सोचों की महवर हो, तुम्हारे बिन मुझे ये जिंदगी बेकार लगती है, मेरा हर दिन तुम्हारी याद की सूरत से उगता है, मेरी हर शाम के पहलू में तुम ही मुस्कुराती हो, मेरी हर रात कर्ब नारसाई से सुलगती है, अगर खुद से तुम्हें मना करूं कुछ नहीं बचता, उसे मालूम है कि ये शब गए तक जागने वाले जैसे ख्वाबों की दुनिया से मोहब्बत सी मोहब्बत है, वो क्यों सोने से डरता है, उसे क्या खौफ लाहक है, वो खुलकर क्यों नहीं हंसता, वो क्यों चुप छुप छुप कर रोता है, उसे मालूम है सब कुछ मगर अनजान बनती है, उसे ये कौन समझाए कि दिल यूं नारसाई की तपिश ज्यादा दिनों तक सह नहीं सकता, जिसे ख्वाबों की दुनिया से मोहब्बत सी मोहब्बत हो वो ख्वाबों के बिना ऐसे अधूरा रह नहीं सकता, उसे ये कौन समझाए कि उससे बेतहाशा बोलने वाला हर मौजू पे उससे बात करता है, कभी ये कह नहीं सकता मेरी वीरान आंखों में कई सपने समो जाओ, तुम्हारे बिन अधूरा हूं मेरी तकमील हो जाओ। हाय हाय हाय हाय हाय संजू, अब क्या बात है, क्या बात है। और जनाब ये महानूर आ गई है, गरीब बाबू अय्यूब आफरीदी भाई को अयाज, नियाज बहादुर भाई को खुशबू वाला चुड़ैल को और सब सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। अच्छा भैया, आप सबसे एक गुजारिश है, चुड़ैल मत कहें उसे, बहुत प्यारी सी मासूम सी भोली भाली सी बच्ची है, चुड़ैल मत कहें, मुश्क कहने, पगली कहने। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी रिक्वेस्ट है, बुरा नहीं मनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, यूसुफ भाई, पापोश से और तमाम सुनने वालों को, उन्होंने سلام کہا ہے, اور خصوصی طور پر ایف ایم 100 کی پوری فیملی کو, خصوصی طور پر آنٹی چاچی عروسہ گلبانو, تمام ڈاکٹرز, عمران بھائی, خطاب لالا, غفران بھائی اور میرے والد صاحب کو انہوں نے سلام کہا ہے. اور اور اور جناب, اور ہم میسیجز کی جانب نہیں جائیں گے. پوچھے کیوں؟ کیونکہ جانا ایک بریک کی جانب ہے.
1: This program is brought to you by AGS Tubular Dikhaye Kaam. AGS Tubular Battery. Dil ko hai aaram.
2: Kabhi socha hai ki ab jang ki surat kya hai? Ab jang maidan-e-jang mein nahi, hamare zehnon mein ladi ja rahi hai. Ab dushman ki goliyan barood nahi, malumat hai. Aur nishana hum sab. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان, پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے, آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
3: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: facebook.com/fm247365 fm247365
5: music twister
6: the music
5: with any soil.
0: ویلکم بیک کہیں گے سونے ہو آپ سب کو. میرا نام ہے ندیم اختر, پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو این اے سونے. میوزک ٹویسٹر میں میں ہوں آپ کے ساتھ. میسجز کی جانب فوراً سے پیشتر بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ. یوسف بھائی کا میسج میں نے پڑھا, اس کے بعد جناب آصف علی صاحب کلفٹن سے آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں این اے سونے, سلام ٹو یو اینڈ آل لسنر. سر مزاج شریف کیسے ہیں؟ اوکے ٹھیک. کیا حال ہے, طبیعت کیسی ہے, آج کی کیا مصروفیات رہی؟ ہائے ہائے, بس چھوڑ یار, مصروف ہی مصروف رہتے ہم, وقت ہی نہیں نکل پاتا یار. ہاں جی ہاں جی. سلام, کیسے ہیں آپ؟ والد صاحب کیسے ہیں؟ سنجو کو اور تمام سننے والوں کو سلام کہا ہے پیار بھرا. ہماری پیاری سی بہن زرین نور نے, عرب جیتے رہو. اور ایوب آفریدی آ گئے ہیں, ارے واہ بھائی, جانے جگر یہ حبیب ہے. دل سے دعا ہے کہ کہ کہ کہ کہ اللہ پاک آپ کو چڑیلوں سے بچا کے رکھے. لالا داس کہنا یار, کب آئے آپ یہ بھی تو بتائیے. اور کہنے جانے جگر یہ حبیبی آپ کو اور تمام سننے والوں کو پیار بھرا سلام. ابھی سلام ان کے اور آئیں گے پکا پکا. خیر رونق جو ہے وہ دوبالا ہو گئی ہے ایوب آفریدی بھائی کے آنے سے. گو کے ذکر اور ڈیڈیکیشن نالو نال چل رہی تھی, ساتھ ہی ساتھ چل رہی تھی. سلام اینے بھائی, آپ ٹھیک ہیں؟ اور سب کو میرا سلام. گانا چلا دے, چلا دیے گا. نام لے کر عادل بھائی نیو لیاری سے چلا دیں گے بھیا, چلا دیں گے یار, ڈونٹ وری ڈونٹ وری. اور اور اور اور آئیں گی, کیا ہوا؟ دو منٹ دو منٹ, سکرولنگ آگے پیچھے ہو گئی. اور امین آ گئے ہیں, سلام کے بعد کہہ رہے ہیں بھائی شو وی آئی بی اوسم بنداز بولے تو جگاز. ایف ایم کی پوری فیملی کو سلام کہا ہے, خصوصی طور پر میرے باپ کو. اور این اے بھائی کی جانب سے ڈیڈیکیٹ ہے سانگ. کرا میں نظارہ کیوں کرا بھائی, میں نہیں کر رہا. डेडिकेट कर देंगे। और अयुब लाला कह रहे हैं जिगर जी बी एन को, माहिन को, शेरबानो को, निघात को, चौसा आम जितना मीठा सलाम, मानूर को ढेर सारी दुआएं और प्यार भरा सलाम। भाई जन चौसे आम की तरह का मीठा सा सलाम भेज दिया है। वैसे चौसे आम से ज्यादा मीठी चीज क्या होती है बताओ? सवाल है, चलो बताओ। फ्रूट में। अच्छा जी, सलाम सुने हो सबको सलाम। हमारे एक दोस्त हैं मुस्तफा भाई, पहले भी आपसे उनकी उनका जिक्र किया था। जी बिल्कुल किया था, मुझे याद भी है। मुस्तफा भाई को हमने गाना भी डेडिकेट किया था। और उनको SMS, ये बिल्कुल आप मत बताएं बार बार कि उनको SMS करना नहीं आता यार। शुक्र करो नहीं आता, अगर SMS करना आता तो सेंड टू ऑल पता नहीं कितने लोगों को होता। और कह रहे हैं कि नदीम भाई से कहना कि एक सॉन्ग उनकी वाइफ यार, ये शकीला लिखे हैं या शकिया लिखा है, शकिया सुल्ताना के लिए चला दें हमें। अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना हमने नोट कर लिया है। और मुस्तफा भाई हम चलाएंगे चलाएंगे चलाएंगे। ये बताइएगा भाभी का नाम शकीला है और क्या था एन, शकीला सुल्ताना के लिए, तो बस सुल्ताना भाभी है। ये मिसेज मिसेज मुस्तफा जी, ज्यादा बेहतर नहीं है जी, ज्यादा बेहतर। और रात मैंने आपको 2 SMS भेजे थे पर आपने सिर्फ 1 SMS पढ़ा, पर वो भी आपने इग्नोर कर दिया। नदीम भाई आप दूसरे लोगों के SMS 4-4 दफा पढ़ते हैं, नहीं 4-4 मैसेज पढ़ता हूँ, 4 दफा एक ही मैसेज को नहीं पढ़ता हूँ। और नदीम भाई एक गाने की रिक्वेस्ट है। अबे भाई अभी मुस्तफा का, फिर आपकी जानिब से। अच्छा ये गुलाम सरवर साहब है, मैं समझा कि ये हमारे सलीम अमन, इन दोनों का स्टाइल सेम है। गुलाम सरवर साहब मैंने आपके मैसेज दोनों पढ़े थे, अब आपका तो याद है मुझे। पहले मैं सोच रहा था सलीम अमन ऐसी बात क्यों कर रहा है। तो गुलाम सरवर साहब आपके मैसेजेस मैंने पढ़े थे, जो गाना आपने लिखा था वो गाना ही नहीं मिल रहा था भैया, यानी कि समझ रहे ना, गाना मिलेगा तो चलाएंगे ना, अब आप पता नहीं कहां से लेकर आएंगे तो वो गाना कहां से चला देंगे भाई। और एक बच्चे की, एक बच्चा एक औरत को घूरते हुए जा रहा था। औरत ने कहा क्या है, तेरी माँ की उम्र की हूँ। उस बच्चे ने कहा तो मैं भी तो अब्बू के लिए देख रहा हूँ। सलीम अहमद सही जा रहे हो भाई, सही जा रहे हो। चले भाई इसी बात पर हम जाते हैं एक बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे जनाब असद साहब की जानिब से। असद साहब ने मेरे ख्याल 2-3 प्रोग्राम्स पहले इस गाने की रिक्वेस्ट की थी, वो आम शो था तो उसमें हम फिल्मी गाना नहीं चला सकते थे, तो आपकी रिक्वेस्ट पर एलो फड़ो

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। असर साहब पता नहीं सुन रहे या नहीं सुन रहे, खैर जी इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों दास पड़ते हो सर्दियों की शामों में। और नदीम भाई उन्होंने अपना नाम चुड़ैल खुद ही रखा है। आप बुरा क्यों मना रहे हैं? नहीं मैं बुरा नहीं मना रहा, मुझे अजीब सा लग रहा है चुड़ैल चुड़ैल कहते हुए, इसलिए कह रहा हूं बच्चा आगे आपकी मर्जी है। महनूर आफरीदी अयूब आफरीदी भाई पखैर रागले महनूर कह रही है, और महनूर और जीबीएन को जावेद अख्तर साहब का मैशअप सॉन्ग प्ले कर। अयूब लाला कैसी बातें कर रहे हैं आप, आज फिल्मी गाने चल रहे हैं ना, ये वाली फरमाइश हम कल पूरी कर देंगे। आज आपके लिए हम पख्तू गाना तो नहीं चला सकते लेकिन कोई ना कोई फिल्मी जबरदस्त गाना चला देगा, मतलब पाकिस्तानी मूवीज के ही गाने चलाएंगे मगर नया थोड़ा सा चला देंगे, अभी तो पुराने चलने ने। और मीरा नेम फिरोजा, अच्छा मेरा नाम फिरोजा है, गाना लगा दो बू, ये कौन सा गाना लगा दो मीरा, अच्छा फिरोजा ये कौन सा गाना है बू, ये लिखा हुआ था और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, हैं जी ते हैं जी। और कहां गया फिरोजा का मैसेज ये रहा, अच्छा जी जिगर महनूर से कहना कि पश्तो का कोई सॉन्ग आपको बताए, बिल्कुल कहेंगे महनूर तू मुझे बता देना, अच्छा लेकिन आज नहीं कल के शो में बताना, बोलिए आज भी बता सकती हो मैं नोट कर लूंगा अपने पास। और पखैर रागले महनूर ने दो दफा तीन दफा कहा है भाई अयूब आफरीदी साहब आप इसका भी जवाब दे दीजिए। और अमीन चार्ली कह रहे हैं सलाम उमिर बाब सलाम पगली चुड़ैल सिस्टर और सलाम संजू सिस्टर अयूब लाला हलीमा नौरीन सिस्टर सबा गुल और तमाम सुनने वालों को स्वीट सा सलाम वालेकुम अस्सलाम। लाला कहते हैं कि अगर आपको कोई टकर जाए तो टेंशन ना ले, फौरन मुझे बताओ शेख साहब से दम करवा दूंगा। अरे क्या बात है। अरे सही ये तो मुझे भूल ही गया मैं शेख साहब को, आजकल शेख साहब नहीं कूद रहे, शेख साहब ने कोई दम दुरूद नहीं किया, आपकी जीबीएन पर भी कोई दम दुरूद करवा दो। उमिर बाप कह रहे हैं मैं अब बिजी हूं हो गए हूं, आपको सुनने वालों को सलाम अमीन को खास तर सलाम नदीम अभी मैं कम आऊंगी जी, मुझे मालूम है उमिर बाब जीती रहे मुस्कुराती रहे। और नदीम भाई आज मेरा गाना जरूर चलना चाहिए, गाने के बोल हैं भाईजन, ये गाने के जो बोल है ना गुलाम सरवर साहब मैंने आपको पहले भी बताया था ये राहत फतेह अली साहब ने गाया है, मगर ये पाकिस्तानी गाना नहीं है, ये नहीं चल सकता, पहले बता चुका हूं मैं आपको, ये उस दिन भी बताया था मैंने आपको, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, नहीं समझ रहे हैं चलिए अच्छी बात। और अयूब लाला जो आपको पसंद हो गाना चला दीजिएगा, बिल्कुल चला देंगे। महरीन बलोच आ गई हैं दादू से, कहती हैं आपका शो बहुत ही प्यारा है, मैं आपका हर शो दिल से सुनती हूँ, कान से सुना करो, पर मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, ये तो और अच्छी बात है, तो मेरे शौहर हर वक्त मुझ पे शक करते रहते हैं, आप बताओ मैं क्या करूं, बस शक वाली हरकतें मत करो। महरीन मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, होते हैं, मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगा, शो सुनती रहिएगा क्योंकि अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक की जाने पर।

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बंद।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: This program is brought to you by
3: AGS Tubular Dikhaye Kaam, AGS Tubular Battery, Dil Ko Hai Aaram.
2: FM 100, like us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। और महरीन का मैसेज जो है वो हमने लास्ट पढ़ा था, और अब जो है आपको एक और आपकी रिक्वेस्ट आई थी, और ये भी रिक्वेस्ट जनाब मैं आप लोगों को बता दूं कि काफी दिन पहले आई थी। फर्स्ट टाइम इन्होंने हमें मैसेज किया था फहीम लोहार साहब ने, और उन्होंने कहा था कि चिट्ठी जरा सैया जी के नाम लिख दें आप। तो मैंने कहा था भाईजान हम आपके लिए गाना जरूर चलाएंगे, आप चाहे सुने या ना सुने हम चलाएंगे। तो आपके लिए गाना फहीम लोहार साहब एल्लो फड़ो।

हबीबी वेलकम बैक कहेंगे और जनाब अब हम जाएंगे आपके दूसरी जानिब मैसेजेस की जानिब। बाबू पगली कह रहे सब खैर है कुछ हुआ है? अरे नहीं कुछ भी नहीं हुआ यार, मैं अपनी तौर पे कह रहा था, तुम लोगों ने तो मेरी बात को पकड़ ही लिया है। अच्छा मुश्क के मैसेज आ गए हैं और कह रही है अस्सलाम वालेकुम डैशिंग, आपके हाल चाल ठीक है? ओके मेरी भी चाल हाल ठीक है। कल का शो ऑसम था, बहुत इंजॉय किया था, सब खुश रहे अपने खर्चे पर, मैं भी खुश अपनी पॉकेट मनी पर, तंग करती रहूंगी यहां से, शाबाश। और कहती हैं कि और सहा से इस गर्मी की शिद्दत में आप किस किस शहर में भुने जा रहे हैं? वैसे सिर्फ कराची में भुने जा रहे हैं या सिंध में भुने जा रहे हैं? पंजाब साइड पर तो बारिश हो रही है, बचपन में एक बार साबन खाया था, सही जा रही हो तुम, अभी तक मुंह से बुलबुले निकल रहे होंगे, दिल अभी तक साफ है। आप भी ट्राई करें, शाबाश। ये जरा बताना मुश्क, अभी बात करते हुए मुझे बुलबुले तो नहीं निकलते? और ब्रेकिंग न्यूज उन्होंने दी है, होशियार खबरदार, चलाक लोमड़ियों से बच कर रहे हैं, फेसबुक यानी किताबी चेहरे वाली फेक अकाउंट से आपकी वॉल पर दौरे कर रहे हैं और बताया मेरा काम था, आगे आपकी मर्जी सानुगी। और डैशिंग शादी एक ऐसा इदारा है जहां इंसान सुबह का भोला शाम को वापस आ जाए तो भी शादीशुदा ही रहता है, और शादीशुदा से सॉरी, आप भोले नहीं रहे, इदारे ने यानी बेगम प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिए, समझ रहे ना? हाँ जी समझ रहे, सब समझ रहे। वैसे शादी की बात से मुझे अभी महरीन की बात याद आ गई, महरीन ही थी ना, हाँ महरीन बलोच हमारी प्यारी सी बहन, आप बेफिक्र हैं अभी आपकी बात पर चर्चा करते हैं। और कह रही है मेरे शोने मोने ने बहुत खूबसूरत बात कही कि जिंदगी और रिश्ते निभाने के लिए भरोसा एतमाद होना बहुत जरूरी है, वरना बदगुमानी दिल के रिश्ते में दरार डालती है और ना चाहकर भी खामोशी दीवार बन जाती है। कुछ लोग होते हैं जो तस्बीह का तीसरा दाना बनकर दिल खराब करते हैं, बेशक वो हासिल जिंदगी नहीं है मगर मेरी चाहत मेरा यकीन है। ये तस्बीह का जो तीसरे दाने की बात की है ना, ये दाना डालने वाले जो है इनके ऊपर भी बात करेंगे। दो बातें हो गई। और आईने के सामने खड़ी बीवी ने शौहर से पूछा, क्या मैं बहुत मोटी लग रही हूँ? झगड़ा ना हो जाए ये सोचकर शौहर ने मुस्कुरा कर कहा, अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं। बीवी खुश हो गई और रोमांटिक होकर बोली, ठीक है तो फिर मुझे अपनी बाहों में उठाकर फ्रिज तक ले चलो, मुझे आइसक्रीम खानी है। हालात कंट्रोल के बाहर जाता है देखकर शौहर बोला, जाने मन तुम यही रुको, मैं फ्रिज उठाकर ले आता हूँ। यानी कि फ्रिज से भी भारी थी। आज भी तुम पर प्यार आया है, ज्यादा नहीं बस 50 ग्राम आया है। और तुम्हारी शो को चंचल चुलबुली बातें जो हैं वो जारी और सारी हैं, और भी शामिल करेंगे ताकि जहां पर सीरियस बातें होने लगे तो तुम्हारी बातों से मुश्क थोड़ा सा तड़का लगा दे हंसी मजाक का। और आगे बढ़ते हैं आपके मैसेजेस की जानिब। अनीमुद्दीन यूसुफ जई साहब, वाजिबुल एहतराम मोहतरम नदीम अख्तर भाई साहब, अस्सलामु अलैकुम, और एक गाने की फरमाइश कर दी है उन्होंने, गाना जोर चलाएंगे आपके लिए। और खिताब गुल्लाला, नसीम कुरैशी, समी शेख, इमरान रियाज, अयूब आफरीदी और मेरे वालिद मोहतरम की खिदमत अकदस में उन्होंने अकीदत भरा सलाम पेश किया। गुज्जर खां तो आगे ने जनाब, साडे प्यारे जे मिर्जा शुजा साहब कह रहे, नदीम भाई सलाम और तमाम सुनने वालों को आराम तस्लीमात। लाला जी की हाल है तो असादा, लाला जी आपसे पूछ रहे हैं कि आपका क्या हाल है, पंजाबी में पूछ रहे थे। आज एक गाना ऐसा के भी डेडिकेट करो शोरो परे जी, शोरो पाई जी केड़ा गाना डेडिकेट कर दीजिए, ये दसो तुसी पहले अपने लो कर दीजिए। हमारी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ आ गई है फैसलाबाद से, और ये भी क्या बात है। हाँ अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, आप कैसे हैं? सदा हंसते मुस्कुराते रहे, इलाही आमीन। और तमाम हसीन समातों को उन्होंने सलाम कहा है और ढेरों दुआएं दी हैं। वो अक्सर मुझसे करता था कि जब मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा तो दूर आसमान पर जाकर एक सितारा बन जाऊंगा। और ये इक्तबास जो है ये डिलीट मत कीजिएगा, अंकल के शो में शामिल करेंगे, यानी कि समझ रही है ना। रुबाब हसन कह रही हैं, नदीम दिल बहुत करता है कि मैं बातें करूं बहुत सारी मगर क्या करें, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में।
اور فاطمہ نور بھی آ گئی ہیں، بہت ساری السلام علیکم کہہ رہی ہیں، وعلیکم السلام، اور تمام سننے والوں کو بھی انہوں نے سلام کہا ہے. اور آگے اور بڑھوں، گلا خشک ہو گیا میرے خیال میں، گانے کی جانب جاؤں گا ابھی، اور ابھی ہم جس ٹریک کی جانب جا رہے ہیں جناب، اس کے بعد پھر چرچا کریں گے ہماری پیاری سی مہرین مہن اور مشک والی بات پر. ہیں جی، جی ہیں جی. تو ابھی ہم جس ڈیڈیکیشن کی جانب جا رہے ہیں جناب، یہ ہمارے سلیم میمن بھائی کے دوست ہیں جو کہ میسج نہیں کر رہے تھے، انہوں نے میسج کروایا ہے ہمارے مصطفیٰ صاحب اور ان کی جو زوجہ ہیں، یعنی کہ ان کی بیٹر ہاف، یعنی کہ ان کی بیگم، یعنی ان کی اور کیا کہیں گے، بیوی سلطانہ، مسز سلطانہ، ان کو یہ ٹریک ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کی جانب سے ایلو پھڑو.

0: वेलकम बैक। हमें खोकर बहुत पछताओगे जब हम नहीं होंगे। यार क्या ट्रैक है यार, मजा आ गया यार। रूना लैला जी ने क्या गाया है ये संजीव, अच्छा गाया है। इनको रूना लैला बहुत पसंद है यार जी। मैसेजेस आपके आ रहे हैं केएचआई स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज, उसको सेंड करें आप 3636 पर। और मैसेजेस की जानब जाने चाहिए मुझे, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। उसकी रीजन ये है कि अभी जाएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक की जाने, और ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ छोटा मोटा सा चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर तफरी करेंगे। यानी कि समझ रहे हैं ना आप।
1: This program is brought to you by
2: AGS Tubular दिखाए काम, AGS Tubular Battery, दिल को है आराम।
3: FM 100, like us on facebook.com/FM247365 FM 247365।
0: वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको। अयूब लाला क्या कह रहे हैं जरा सुने। एक समंदर है जो काबू में मेरे हैं, और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। आय हाय हाय हाय। एक उम्र है जो गुजारनी है उसके बगैर, और लम्हा है जो उसके बगैर गुजारा नहीं जाता। आय हाय हाय हाय हाय। खुसूसी तौर पर ये डेडिकेट है, और मुझे पूरा यकीन है कि सब समझ गए होंगे कि इनको डेडिकेट किया इन्होंने। और कह रहे हैं कि महानूर, थैंक यू महानूर, आपके लिए ढेर सारी दुआएं, सलामत रहें, खुश रहें। ये कह रहे हैं अय्यूब आफरीदी भाई। अच्छा भाई, अब थोड़ा सा ज्यादा नहीं, दो चार मिनट लूंगा, और उस बात की जानिब जाएंगे हम। हमारी प्यारी सी लिसनर हैं जिनका नाम है महरीन बलोच, दादू से इन्होंने हमें मैसेज किया है। शो बड़े शौक से सुनती हैं, और इनके हस्बैंड जो हैं वो इन पर बड़ा शक करते हैं। देखो महानूर महरीन, बात दरअसल ये है कि कुछ लोगों की ना तबीयत ही ऐसी होती है कि वो शकी मिजाज होते हैं खामखा, और शकी मिजाज हमेशा कमजोर इंसान होता है, जिसको अपने ऊपर एतबार नहीं होता ना, अपनी जात पर एतबार नहीं होता, वो किसी पर भी एतबार नहीं करता। ये बेसिकली शादी एक नाम ही भरोसे का, ट्रस्ट का, एतबार का है कि इंसान अपनी बेगम के ऊपर पूरा एतबार और एतमाद करे। इसी तरीके से बेगम जो है वो अपने शौहर पर एतमाद और एतबार करे। ये बेगम के ऊपर भी लागू होती है ये बात 100%। छोटे शहरों में, गांव देहात में बेगम मात जो होती हैं वो थोड़ा सा मर्दों के जेरे असर होती हैं, और जो छोटे से बड़े शहर होते हैं और बहुत बड़े शहर जो होते हैं वहां की खवातीन जो होती हैं थोड़ी सी जहनी आजाद मिजाज की होती हैं, तो उनको ये बात पता होती है, तो वो भी जो है शक करती हैं। जैसे कि वैसे तो शक हर औरत करती है, मगर जो छोटे शहर या गांव देहात की खवातीन जो है वो जो मर्दों के जहरे असर हों वो बोल नहीं पाती, और ये बोल लेती हैं भाई चाहे जहरे असर हो या ना हो। तो हो सकता है कि आप उनमें शामिल हों जो कि अपने शोहरों के जहरे असर हैं, ठीक है ना। तो लिहाजा ये डर, ये खौफ निकाल दें। और आपको एक बात सच्ची बता देता हूं, देखिए मैं ये अपने तौर पर बता रहा हूं, इस पर अमल नहीं कीजिएगा, किसी से मशवरा करके कीजिएगा अगर अमल करना चाहें। महरीन आपको बता रहा हूं, वो ये है कि इंसान जब सच्चा है और उसमें कोई ऐब नहीं है तो उससे उसे किसी से डरना नहीं चाहिए। तो लिहाजा अगर आपका शौहर आप पर शक करता है और आप पर किसी भी किस्म की इल्जाम तराशी करता है तो खामोश मत रहिएगा। आप उसको बोलें कि भाई तू सामने लेकर आ, मुझे तो, मैं और मेरा अल्लाह तो जानते हैं कि हम सच्चे हैं। अगर इंसान सच्चा है, हां बेऐब है, तो वो उसको डरना नहीं चाहिए और सच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और सच में बहुत बड़ी ताकत है। और एक तो ये सिलसिलाकार है, दूसरा उसका ये, उसकी ये बीमारी जो है ना शायद इससे कम हो जाए। ये एक बीमारी है ये शक करना जो होता है ना, ठीक है ना, जो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना लोग, मर्द या औरत भी, तो वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये मेरी एक अकल नाचीज जो छोटी सी अकल है मेरी, गो के मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं किसी को कोई मशवरा दूं। हां अलबत्ता इतना जरूर है कि जितना मैं सोच सकता हूं, जितना मैं कम अकल हूं, उस हिसाब से अपना कोई ना कोई जिक्र या मशवरा जो है वो आप लोगों तक پہنچا دیتا ہوں. تو یہ ایک مشورہ ہے میری بہن, جیتی رہو, مسکراتی رہو, شاد رہو, آباد رہو, تمہارے لیے ڈھیر ساری دعائیں. ہاں اللہ جی, بہت ہو گیا بھائی. اور کہہ رہے جگر ہم تو سمجھ رہے ہیں, اللہ جی بی این کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جو ہے وہ چونسا آم کا پیٹی جو ہے وہ ہر جگہ پر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ جب کسی کو, ہاں بکری کو جب گھاس دکھاتے ہیں تو بکری آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتی ہے, تو بس آپ اس گھاس کو تلاش کریں, یعنی کہ سمجھ رہے نا. اور طاہرہ مسعود آ گئی ہیں, کہہ رہی ہیں السلام علیکم, زندگی کی راہ میں. اچھا جی, گانے کی فرمائش کر دیجیے. طاہرہ کیا بات ہے بھائی, آتے ہی فرمائش ہے.

मेरी प्यारी सी बहना हलीमा भी आ गई हैं और कह रही हैं सलाम अख्तर भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और कह रही हैं कुछ जख्म आंखों में आंसू नहीं, रूह में खामोशी छोड़ जाते हैं. बहुत गहरी बात कर गई हो लड़की. और भाई संजू की एक इक्तबास की जानिब जाएंगे, वो खामोशी से सुनती हैं एक बार भेज कर बस. कितनी अच्छी है संजू जी, बहुत बेहतरीन सॉन्ग है रूना लैला का. और कह रही है पिछले प्रोग्राम में भी आपने इसी बात पर चर्चा की थी. अब क्या करें, आप बार बार पूछेंगी, हम बार बार कहेंगे हम हाजिर हैं, यानी कि समझ रही है ना आप. और क्या बात है भाई, एक इनका सिग्नेचर जो है वो मैसेज आ चुका है. यही लफ्ज जो है मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था संजू, और आज आपने वो लिख दिया. समझदार हैं आप वैसे बहुत. तो संजू की सिग्नेचर लाइनें सुने जरा आप, और वो क्या कहती हैं? कहती हैं कि ए रूहे मन, सुनो रूहे मन, मुझे दुनिया भर की खुशी नहीं चाहिए, मुझे हर खुशी में तुम और तुम्हारा साथ चाहिए. ए जान से प्यारे, इस जहां में फकत आपका होना ही काफी है. कुछ को खुदा ने बनाया ही मोहब्बत के लिए होता है, वो सिर्फ चाहने के काबिल होते हैं, उनसे जितनी भी मोहब्बत की जाए कम लगती है. ए सहर तारी करने वाले शहंशाह, आप भी ऐसे ही हो. आपकी जात में खुदा ने ऐसी कशिश रखी है कि आपकी मोहब्बत में जो एक बार गिरफ्तार हो जाए वो कभी शहर से निकल नहीं सकता. और मैं तो आपके शहर में जकड़ी जा चुकी हूं. आप इस कदर खूबसूरत हैं कि आपके सामने दुनिया की हर शय बेरंग लगने लगती है. जब आप मुझसे बात करते हैं ऐसा सुकून मिलता है कि रात के खाबनाक माहौल में आपकी आवाज का शहर मेरे कानों में चाहत की चाशनी उंडेलता है. मेरे रोम रोम से उदासी खत्म हो जाती है और रोम रोम सुकून में जकड़ जाता है. और इसका बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने एक तशरी की है. इसमें एक लफ्ज, एक सतर मैंने पढ़ी थी और वो मैं एक बार फिर देखता हूं कहां है. बड़ा खूबसूरत इक्तिबास है ये और दिल की बात है. हाँ जी, ए सहर तारी करने वाले शहंशाह. अच्छा, इसको शहंशाह भी कह सकते हैं लेकिन शहंशाह मैंने पढ़ दिया, इन्होंने शहंशाह लिखा हुआ है तो उसको बड़ा मेरी इस्लाह नहीं बल्कि मेरे इल्म में इजाफे के लिए लिखती है शहंशाह, या आम तलफ्फुज में शहंशाह फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब बादशाहों का बादशाह शहंशाह है. बहुत शुक्रिया आपका. वैसे मैंने सही पढ़ा था ना. आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं. लब हिले तो मूंग रुए के फूल खिलते हैं कहीं, लब हिले तो मूंग रुए के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियां भी आपकी आवाज हैं, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज हैं, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज हैं. अरे क्या, चलें संजू आपको ये गुनगुना के सुनाता हूं मैं. आपकी आंखों में कुछ

कैसा लगा? हाँ जी, ते हाँ जी। और जनाब आगे बढ़ते हैं, एक दो मैसेज पढ़ लेते हैं। हमारी प्यारी जी बहना नौरीन कह रही है, मत के जीने की उम्र बहुत कम होती है क्योंकि जिम्मेदारियां और फिक्रें उसे जल्द थका देती हैं, मगर वो फिर भी जिंदा रहता है अपने लोगों के लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए और ख्वाबों के लिए जो उसके कांधों पर रख दिए जाते हैं। यार ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, यकीन माने कि उस पर बहुत चर्चा करने को दिल चाह रहा है। और इतनी जबरदस्त सी बात इन्होंने लिखी है नौरीन तौसीफ, मेरी प्यारी सी बहन ने, कि इस पर बहुत कुछ कहने को दिल कर रहा है, मगर मैं नहीं चाह रहा कि बहुत ज्यादा सीरियस माहौल हो जाए। इसी बात पर हम आपको एक गाने की जानिब लेके जा रहे हैं और ये ट्रैक हम अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब की जानिब से डेडिकेट कर रहे हैं आप सबको। एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे भाई। 2.5 करोड़ का हर किस्म का घास खिला चुका हूँ लेकिन क्या करूँ नदीम भाई, हर तरह की नस्ल का घास खिला चुका हूँ मगर ये मेरी नजर इधर उधर होते ही घास चुराकर भाग जाती है। बकरी की बात हो रही है, ये अय्यूब आफरीदी साहब का मैसेज है। अब क्या कह सकते हैं भैया, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। और कुछ देर तो रुक जाओ, वाह वाह फरमाइश आ गई है। और ये आपको एक और बात बता दूं जनाब कि अब आप लोग फरमाइश अगर करेंगे तो मैं पूरी नहीं करूंगा, ठीक है ना। इस फरमाइश के अलावा बोल रहा हूँ, ये 12 बजे एग्जैक्ट आई है मेरे पास, तो मेरी बहन आपकी फरमाइश तो जरूर पूरी होगी। और मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं, कहां गया भाई स्क्रॉलिंग। आए आप लोगों की मोहब्बतें प्यार, हाय अल्लाह जी की करना मैं। और मानू खेरी जमा सरदार।

Dara, da mine yara, वो प्ले कर दें बस, ये अभी नहीं प्ले हो सकता, वो हम कल प्ले कर देंगे आपके लिए। और अयूब लाला कह रहे हैं, मानूर थैंक यू, जीती रहो, सलामत रहो, आपके लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। और अयूब लाला, समी और संजू जी को सलाम सुने हो, आजकल अरूसा जी कहाँ हैं? सलीम एमन, सही याद किया तुमने, इतनी जल्दी याद आई तुम्हें, मेरी प्यारी सी बहन काफी दिनों से नहीं आ रही। और ओके नदीम भाई, फिर मेरी वाइफ की पसंद का पश्तो गाना चला दें। नदीम भाई जान, आपकी भाभी पख्तून है माशाल्लाह, ये गुलाम सरवर साहब है या कोई और है? भाई अपना नाम लिखा करें आप, अब मुझे ये पता ही नहीं है कि आप वही हैं कि जिन्होंने तीन तीन मैसेज किए, फिर आप गिला करते हैं चार चार मैसेज पढ़ लिए भाई। तो गुलाम सरवर साहब, ये अगर आप ही हैं तो बताइए, एक मैसेज और कीजिए, फिर हम चलाएंगे आपके लिए। और सर आपका शो अब बोर होता जा रहा है, क्योंकि शो अब कुछ नाम है और मैसेज है, बार बार रिपीट होते जा रहे, तो भाई तुम भी कर लो है आसे भाई, तो कोई मसला है? ये मुकेश भाई हमारे फर्स्ट टाइम आए हैं। मुकेश जी, कहीं सुबह को आपने मुश्क लिखा हुआ है यार, मुश्क जी कहीं सुबह को आपने बर्फी समझकर खा लिया होगा। सलीम मेमन साहब कह रहे हैं मुश्क बताओ। अफशा आ गई हैं और कह रही हैं जनाब सलाम, फरमाइश आ गई अफशा, कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश को भी पूरा करने के लिए। और अब्बासी अलबेला शहजादे कैसे हो, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं? जानू बर्गर वाला भाई से कुछ कहा था, ये लड़का कौन है? मुझे कोई पुलिस वाला समझ रहे थे। अच्छा भाई, अब्बासी अलबेला भाई जानू बर्गर वाले के पास पहुंच गए थे भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, ये आपकी मोहब्बत है अब्बासी भाई, बल्कि मैं तो अलबेला भाई कहूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वो अलग बात है साकी कि मुझे होश नहीं, वरना मैं कुछ भी हूँ एहसान फरमोश नहीं। तो आपका आना इस वजह से बेकार हो गया कि अगर मुझे पता होता कि आप आएंगे तो आप पूछ तो लेते, मैं तो था ही नहीं वहां। मेरी तरफ से अच्छा, पुलिस वाले समझ रहे थे मेरी तरफ घूर रहे थे, आप बिजी थे, तो फिर कभी मिल लेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी अलबेला भाई, थैंक यू वेरी मच। और उम्र रुबाब, शो में नहीं होती हो तो उदास हो जाता हूँ, हाय अल्लाह जी। कौन है भाई ये? नाम नहीं लिखा, अमीन भाई हैं ये। कोई भी सॉन्ग संजू के नाम कर दीजिएगा जरी नूर, आप अगर ये मैसेज ना भी करती मेरी बहना तो हम आपकी जानिब से जरूर डेडिकेट करते। कादिर बख्श आप कह रहे हैं नदीम भाई आप और सब सुनने वालों को सलाम, कैसे हैं आप? अने भाई आप क्यों नाराज हो रहे हैं? चल अच्छा चुड़ैल कह दो भाई, वो नाराज नहीं थी तो मैं क्यों, वो कह सकते हैं भाई। महानूर कह रही है शादी वो लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, ये तो फैक्ट है। मुस्तफा भाई ने थैंक्स कहा है और अच्छा जी मुलाकात करने भी आएंगे मुस्तफा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लाला आपकी बकरियों का क्या हाल है? सलीम मेमन पूछ रहे हैं। और सैयद अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वालों को, उन्होंने सलाम कहा है। ला हासिल इश्क के बारे में आप क्या कहते हैं? हाय सैयद अतीकुर रहमान साहब, ये एक लंबी बहस है, अगर यही मैसेज आप मुझे जुमेरात वाले शो में करेंगे तो जरूर बताऊंगा। और जिगर 100 का फन कब तक होगा? लाला ये समझा नहीं है। सलाम आपको और दुआ बहुत लगते हैं नदीम, शुमा जौने मौन जौने जिगर जौने रूह रूह मौन नदीम अमीन को सलाम। हाय इतना कुछ फारसी में आपने लिख दिया, सो स्वीट हो मेरे बाप, जीती रहे मुस्कुराती रहे। हाय गला खशक हो जाता है। चार्ली आ गए हैं चैपलन, मेट्रोविल में बूंदा बांदी हो रही है क्या आपकी तरफ हो रही है? भाई हम तो इस वक्त स्टूडियो में बैठे हुए हैं। चुड़ैल बहने बहना और उमर रुबाब आप सब भी बताएं, एने भाई आप भी, चुड़ैल साहब चार्ली साहब यार चुड़ैल चुड़ैल हो गया इसीलिए नहीं बोल रहा था। और

और भाई यार और मैसेज सब हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त से ट्रैक की जानिब, और दो ट्रैक आपको सुनाएंगे जनाब। एक ट्रैक तो हम डेडिकेट कर रहे हैं संजू को, जरीन नूर की जानिब से संजू गाना है आपके लिए, और दूसरा ट्रैक जो है वो ताहिरा की फरमाइश होगी जो कि हम पूरी कर रहे हैं, एलो फड़ो।

वेलकम बैक यू जिंदगी की राह में टकरा गया कोई एंड आई होप कि आपको ट्रैक आया होगा पसंद। बढ़ते हैं जनाब आपके मैसेजेस की जानिब। मिर्जा शुजा साहब गुजर खान तो कहते हैं, नदीम भाई बात यह है कि आप सबको मौका देते हैं कॉल पर हल्के बल्कि एक लिंक ही आप न्यू लिसनर्स के लिए रखते हैं, ये कहना गलत होगा कि आप सिर्फ मखसूस लोगों के नाम लेते हैं और 100% मुझे यकीन है कि आप सारे मैसेजेस पढ़ते हैं, कोई एक आध रह जाए तो रह जाए। हाय सो स्वीट मिर्जा साहब, थैंक यू। और जब तक आप और हम हैं ना तो इस शो की रौनक और ना ही इसकी को डाउन होने देंगे। ए हुई ना गाल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हर इंसान अपनी राय रखता है यार, कहने दो। और बहुत मशहूर हैं जनाब हमारे प्यारे से अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब, और उन्होंने थैंक यू कहा। मुश्क कह रही हैं अपने जिन की चुड़ैल हूँ बस, हाँ ये हुई ना बात भाई, मैं हूँ जिन और मेरी चुड़ैल है ये, तो लिहाजा पगली कह लिया करो, मुश्क कह लिया करो। इतना प्यारा सा नाम है यार, मैं तो सबसे पहले इनके नाम से बड़ा इंस्पायर हुआ था, ये इतना जबरदस्त सा नाम मुश्क लैला है नहीं। क्या वैसे मुश्क, ये बताओ नाम किसने रखा था, अम्मी ने अब्बू ने दादा ने दादी ने? और जिगर फोन कब ठीक होगा जी, हो जाएगा। मानूर का इंतखाब अच्छा है, वो चला दो प्लीज, आज मेरी फरमाइश को कैंसिल कर दो। आए लेकिन वो अभी चल नहीं था, जमा सरदार दमी ने यारा, वो अभी नहीं चला सकते। लाला आज फिल्मी गाने चल रहे हैं तो बहुत माजरत, यानी कि समझ रहे ना आप। और संजू कह रही है, अरे संजू तो बहुत कुछ कह रही है, रूहे मन फिर आ गया है भाई। प्यारी सी जरीन को ढेरों प्यार उनकी नजरों से, आए जबरदस्त वाह वाह जरीन नूर, आपने जो गाना डेडिकेट किया है उसके लिए कहा है। और रूहे मन जो है आपका हम अभी शामिल करते हैं संजू, डोंट वरी डोंट वरी भाई। आजकल मैं फरमाइश नहीं कर रही, ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल पता है, तो आप खुद ही इसे कोई गाना भी डेडिकेट कर दिया करें, कुट्टी हो जाऊंगी आपसे। स्वीट मेरी बहना, याद रखना फिर मैसेज नहीं करूंगी भाई, ये तो तड़ी हो गई भाई। भाई अब हम आपके लिए गाना चलाएंगे। नाम लिख लिया नीमा का। और जनाब जनाब जनाब सलाम टू सब फ्रॉम नूर रहमान एंड अब्दुल कवी एंड अब्दुल मेमन टू कराची। हाय वालेकुम अस्सलाम भाई नूर साहब, अब्दुल कवी साहब और अब्दुल मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना प्यारा सा मैसेज किया है। समंदर ना हो तो कश्ती किस काम की, मजाक ना हो तो दोस्ती किस काम की, ये जिंदगी कुर्बान है दोस्तों के लिए, दोस्त ना हो तो जिंदगी कैसे, जिंदगी किस काम की। सलीम मेमन कह रहे वाह भाई वाह क्या बात है। लुकमान साहब आ गए हैं और सलाम कह रहे हैं, और कह रहे हैं हो सके ये सॉन्ग चला दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।

कम जी। अच्छा ये वाला गाना था तो लुकमान साहब ये गाना नहीं चल सकता, उसकी वजह मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक तो 12 बज चुके हैं, बल्कि 12:20 हो चुके हैं, और दूसरी बात ये है कि ये आज से फिल्मी गाने चल रहे हैं। और कादिर बख्श कह रहे हैं जब आप फीमेल लिसनर्स के लॉन्ग लेटर पढ़ते हैं हाय तो शो में अजीब सा हो जाता है। हाय लॉन्ग लेटर में इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, वो नहीं आपको समझ आती कादिर बख्श भाई। खैर आपकी मर्जी है, ये आप सोच रहे हैं तो छोटे छोटे आपके मैसेज भी तो पढ़ता हूँ ना नालो नाल। वालेकुम अस्सलाम अमीन, आपको भी अस्सलाम वालेकुम उमरबाद, खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। और ये तो हो ही रही थी बात, अब हम लाला की जानिब से गाना डेडिकेट करने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। मगर उससे पहले थोड़ा सा ये म्यूजिक सुने, बल्कि अभी हम लाला का गाना नहीं डेडिकेट कर रहे, अभी हम चला रहे हैं जनाब अमीन की जानिब से। अमीन का मैसेज अभी आया था ना, लाला इसके बाद आपके लिए गाना चलेगा, ठीक है ना, आपकी डेडिकेशन चलेगी। तो अमीन भाई का गाना जनाब एल्लो फड़ो।

वेलकम बैक सुनियो कदम नजारा जितों ओदी तस्वीर दा ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप यू लाइक इट। मुश्ताक साहब ने मैसेज किया है और सिर्फ लिखा है मुश्ताक, नहीं नहीं मुश्क लिखा है भाई। खैर जिसने भी मुश्क लिखा है भाई अपना पूरा मैसेज तो लिखो।

अच्छा जी, अब्दुल मन्नान मैंने पढ़ा था, वो कह रहे हैं ये नाम नहीं है, अब्दुल मोमान है, मोमन, अब्दुल मोमन, अब्दुल रहमान, नूर रहमान लिखा हुआ था नाम उस मैसेज में, अब्दुल कवि लिखा हुआ था, अब्दुल मेमन लिखा हुआ था भाई, लेकिन ये मोमन, मोमन लिखा हुआ है, मोमिन होगा, मोमिन, हाँ मेरा ख्याल है मोमिन होगा, लेकिन ये मेमन लिखा हुआ था। अच्छा, अब्दुल मोमिन साहब माजरत चाहूंगा, इस तरह हो जाता है कभी कभी, डोंट वरी डोंट वरी। आसिफ कह रहे हैं आपका शो ही अच्छा भाई, वो कह रहे हैं कि आप जैसे मर्जी चलाएं भाई शो, और तनकीद की है नहीं, और ये लिसनर का राइट है, बिल्कुल है भाई मेरे शहजादे, मैं तो तनकीद का कोई मैसेज छोड़ता ही नहीं, लोग तो मैसेज ही नहीं पढ़ते हैं तनकीद के, हाँ जो काबिल एतराज जुमले लिखते हैं लोग वो मैं नहीं पढ़ता, लेकिन तनकीद जो है वो जब भी होती है तो मैं जरूर पढ़ता हूँ। तो आसिफ ऐसा कोई मसला नहीं है शहजादे, फुटबॉल मैच देख रहे हो या फुटबॉल से वो नहीं है आज, क्योंकि क्रिकेट के तो तुम शदाई हुई। सलाम टू ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स फ्रॉम अब्दुल कुद्दूस साहब। अब ये देखो मैं इतने सारे नाम ले रहा हूँ आसिफ, बेतहाशा माशाल्लाह से नए लिसनर्स जिनके नाम लिए जा रहे हैं और वो जो शॉर्ट मैसेजेस कर रहे हैं। अब वो जो पुराने लिसनर्स हमारे रेगुलर लिसनर्स होते हैं उनके जो मैसेजेस आते हैं वो उनमें वो अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं, अच्छे अच्छे इंतखाब भेज रहे होते हैं, अच्छे अच्छे इख्तिबास भेज रहे होते हैं, अच्छी अच्छी बातें हो रही होती हैं, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, नो डाउट आई रियली लाइक द मैसेजेस। आगे मतलब अपनी अपनी पसंद है भाई, जो भी लिसनर अगर आपने अधूरे सपने पूरे करना चाहता है तो वो उठने के बाद दोबारा सो जाए। सलीम मेमन, ओके टेक बात है भाई। अच्छा भाई, जो भी भाई या बहन है ये हमारे बलोच भाई या बहन है, वो कह रहे हैं मुश्क जो है वो चूहे को बोलते हैं बलोची में, तो मेरे जितने भी बलोची बहन भाई सुन रहे हैं वो जरा मुझे बताएं क्या वाकई ये सही है, मुझे बलोची इतनी अच्छी तो नहीं आती, बस समझ जाता हूँ थोड़ी बहुत, तो ये भी जरूर बताइएगा। शनाया आ गई है भाई, कह रही है सलाम अलैकुम, मैंने सुने हो कैसे हैं आप और आपके बाबूजी कैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और कह रही है FM 100 की पूरी फैमिली को शनाया का प्यार भरा सलाम, लेट ज्वाइन किया मैंने, कोई मसला नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज प्रे फॉर मी, अल्लाह ताला हमारी प्यारी सी शनाया को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, ढेरों दुआएं हैं आपके लिए। और हमारे मिर्जा साहब कह रहे हैं वाह वाह जबरदस्त गाना है, नजारा मजा अच्छी भी हो ही, कह रहे हैं क्या बात है, क्या बात है भाई, पसंद आ रहे हैं गाने। और तमाम सामाइन से दरख्वास्त है कि प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा करें और मुतालबा करें कि जल्द से जल्द फोन दिए करें। ये लाला दास गाना, इस तरह तो होता है, इस तरह के काम हो गए। और नेक्स्ट ट्रैक की जानिब जा रहे हैं जनाब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट करेंगे काफी लोगों को, हमारी प्यारी सी बहना जो है हलीमा पठान जो है उनकी जानिब से सबको डेडिकेट करेंगे, हमारे प्यारे से आदिल लियारी वाले जो है उनकी जानिब से करेंगे, गुलाम सरवर साहब आपका गाना तो हम चला नहीं सके मगर ये ट्रैक जो है वो आपकी जानिब से भी हम डेडिकेट करेंगे, और जितने भी हैं, नौरीन बहना का गाना हम अभी थोड़ी देर में चलाएंगे, लेकिन फिलहाल पहले ये सारे नु पूरा कर दीजिए भाई, और ये ट्रैक जो है वो हम चला दें, कहां गया भाई ट्रैक, एलो फड़ो जनाब।

वेलकम बैक कहेंगे भाई, गाना पसंद आया आप लोगों को या नहीं है? ये तेरा ना मेरी साहब की आवाज, क्या बात है, क्या बात है। मैसेजेस कर रहे हैं आपके एच आई स्पेस, आपका नाम, आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं 3636 पर। हमारे खादर बख्श बलोच साहब कह रहे हैं आप आसिफ के मैसेजेस का बुरा ना माने। भाई क्यों मानूंगा भाई, नहीं माना भाई। आज आसिफ की टीम ने अपने दोनों मैचेस हारे हैं, टेंशन में है मेरे शहजादे आसिफ भाई। हमारा छोटा भाई है यार, मैं कादिर बख्श भाई ना आपकी बात का बुरा मान रहा हूँ ना उनका मान रहा हूँ, यानी कि समझ रहे ना आप। हाँ टेंशन फ्री हूँ मैं। महानूर कह रही है अयूब आफरीदी भाई आपने महंगे वाला घास खिलाया है, सस्ते वाला सस्ते वाला खिलाया करें। यार ये वैसी बात सही है, कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छी चीजें, साफ सुथरी चीजें। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, बहुत सारे नलों में जो पानी आ रहा है वो बोरिंग का आ रहा है या गंदा पानी आ रहा है। बहुत सारे बेचारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिल्टर वगैरह घर पे नहीं लगाए हुए, तो वो उसी पानी को पी रहे हैं और उससे वो ओके टेक चल रहा है उनका सिलसिला। अगर आप उनको मिनरल वाटर या फिल्टर वाला पानी पिला देंगे तो उनका पेट खराब हो जाएगा। यानी कि समझ रहे ना आप। तो घास, घास के ऊपर भी डिपेंड करता है। वैसे घास बदल कर देखें आप, देखिए आपकी बकरी आपकी तरफ आती है या नहीं आती। अयूब लाला मैं भी आपको मशवरा दे रहा हूँ हमारी प्यारी सी बहन मानूर की जानिब से भी। और अमीन कह रहे हैं कि मुश्क, जी हाँ चूहे को कहते हैं और पश्तो में भी मुश्की मंगा कहते हैं। सिस्टर मुश्की चलाक हैं, उन्होंने अपने आप को पगली चुड़ैल का लकब दे दिया। सिस्टर मुश्की जो है उसको पता भी नहीं होगा मेरी तरह, ये आप लोगों ने बताया ना मुझे, अच्छी बात है यार। और अल्लाह जान हम सब मर्दों को ये तौफीक अता फरमाए कि हम दरी भी क्या रखें। अमीन भाई क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आया। अच्छा वक्त तेजी से क्योंकि गुजर रहा है तो हम एक ट्रैक की जाने जा रहे हैं। जरीन नूर ने कल मुझे अभी याद आ गया, उन्होंने कहा था कि नदीम भाई अपनी आवाज में संजीव का गाना डेडिकेट कर, तो मैंने कल एवं एक गाना गा दिया था उदासियों से भरा हुआ। तो आज जो है वो पाकिस्तानी मूवीज के हवाले से एक थोड़ा सा गाना आपको सुनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। ये ट्रैक जरीन नूर मेरी प्यारी सी बहन आपकी जानिब से डेडिकेट कर रहे हैं।

वेलकम बैक आएंगे सुनियो एंड आई होप ये ट्रैक पसंद आया होगा। वक्त बड़ा महदूद सा रह गया है। तानिया हसन जी भी आ गई हैं जनाब और अभी अभी इन्होंने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तानिया जी। और उन्होंने तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से अस्सलाम वालेकुम कहा है। शो सुन रही हैं अब, हमारे साथ साथ हैं, मैसेज करती रहेंगी, ये हुई ना बात। और शनाया कह रही है वाह जी वाह, जबरदस्त आवाज, बेहतरीन अदायगी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और तुसी तो छा गए हो, एवी किया उन्होंने। और उसके साथ साथ संजू क्या कह रही है, क्या कहने हैं नदीम, दुनिया किसी के प्यार में इससे ज्यादा क्या लिख नहीं सकती, आपकी आवाज मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है, दिल से शुक्रन। जीती रहे उस गदादी ने, आपको पसंद आ गया। तोहफा जो होता है वो उसकी कीमत पता क्या होती है, आप देने वाले की चाहत, देने वाले की मोहब्बत। एक फूल जो है चाहे वो 100 रुपए का या 50 रुपए का भी हो, वो भी बड़ी अहमियत होता है, रखता है। और ये जरूरी है कि सामने वाला उसकी कदर करे, तो बस आपने कदर की, जरा नवाजी आपकी। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं। वैसे बेसिकली जरीन नूर ने ये डेडिकेट किया था और कहा था कि नदीम भाई अपनी आवाज में, यानी कि समझ रही है ना। और जी बिल्कुल, बलोची में मुश्क छुए को बोलते, ये मेरी प्यारी जी है ना, हलीमा पठान ने भी बता दिया। अबे भाई मुश्क कहाँ गायब हो तुम, यानी कि समझ रही हो ना। और नदीम भाई मैं हैरान हूँ, हमारे टॉप माजी के सॉन्ग हमारे पड़ोसियों ने चोरी कर लिए हैं और बहुत से दुने भी हैं, ये हैं तो पक्के चोर और खुदा को खुद को सुपर पावर कहते हैं, पक्के चोर हैं और खुद को सुपर पावर के। यार दिल खुश कर देता तुझे इतना प्यारा मैसेज कर। और इरफान मेमन भी आ गए हैं जनाब और कह रहे हैं स्वीट सोनियों को मासूम से गरीब से बच्चे का सलाम कबूल हो, सॉरी लेट आया, ऑल एफएम 100 की टीम को अस्सलाम वालेकुम। फूल अगर प्लास्टिक का हो तो हाय हाय हाय, फिर तो उसकी कोई कदर ही नहीं होती। और मुश्क आ गई है भाई, चलिए सोच रही हूं बर्नौल भेज दूं। इसका मतलब ये है कि जलने वाले जो है ना, यानी कि समझ रहे ना, बहुत तेज मुश्क। अच्छा जी, दरी भी रखें, ये बस इतना लिखा हुआ, दरी भी रखें, ये कौन है भाई दरी रखने वाला। और हमारे कादिर बख्श बलोच के रहने भाई, आपकी आवाज जबरदस्त है, शुक्रिया शहजादे। और चुड़ैल बहना को सॉरी, आप प्यारी पगली चुड़ैल हैं, डोंट माइंड जोकिंग। अमीन तुम भी वैसे चुटकुले दे रहे हो फुल टाइम है, और अभी फौरन क्योंकि फरमाइशें बहुत सारी हैं और वो पूरी भी करनी है। हाय हाय मुश्क, बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई फारिग नहीं है। और अभी हम जा रहे हैं जनाब एक और ट्रैक की जानेब, और ये ट्रैक जो है हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ ने इसकी फरमाइश की थी। तो नौरीन बहना आपका ट्रैक एलो पढ़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने। और लाला कह रहे हैं कि मानूर मैंने अपनी बकरी को पिस्ता बादाम किशमिश रोजा अखरोट अंजीर चने खिलाए हैं, अगर घास खिलाता तो फिर अफसोस नहीं होता। अगर उस दफा मुझे वो बकरी मिल जाए तो मैं अपने गांव के पहाड़ों की बकरी कह रहा हूँ घास खिलाऊंगा, वो भी कड़वी वाली। वैसे आपको पहले ही घास खिलानी चाहिए थी, आपने सबसे बड़ी गलती यही की कि पिस्ता बादाम किशमिश चरमोजे खिला दिए। और जिगर माशू कितनी अच्छी लियारी है, प्यारी है मेरा ख्याल। और हमारे फॉर्म में एक मुर्गी है जिसका नाम मुश्क है, कह रहे हैं मुश्क कितनी अच्छी और प्यारी है। और हमारे फॉर्म में एक मुर्गी है जिसका नाम मुश्क है, जिगर जब भी आप मेरी आएंगे मेरे पास तो आप आवाज लगाएंगे ना मुश्क तेरे कदमों में, वो मुर्गी हाजिर हो जाएगी। सो स्वीट। अच्छा वक्त का में मुकाबला सख्त है जनाब, हमारी प्यारी सी तानिया हसन जी के हरी जो है उनकी है बर्थडे। वाओ, तो सबसे पहले तो उनको बर्थडे विश करेंगे जनाब और कहेंगे

भाई हमारी ढेर सारी दुआएं स्पेशली आप दोनों के लिए, तानिया हसन जी आपके लिए और आपके हबीबी के लिए, हबी के लिए, कि अल्लाह ताला आप दोनों को सलामत रखे, आपकी जोड़ी ता कयामत सेहतमंद तंदुरुस्त और तवाना रहे, सो स्वीट। और हम अपने पूरे FM 100 की जानिब से, ठीक है जी, आपके हबी को ट्रैक डेडिकेट करेंगे, एलो फड़ो। और आपके हबी को डेडिकेट कर रहे हैं FM 100 वाले आपकी जानिब से।

वेलकम बैक चार्ली का मैसेज आया है। चार्ली रियली सॉरी, ये कहाँ था? अरे भाई समझ में नहीं आ रहा है, ये बगैर नाम के जो मैसेजेस होते हैं ना, ये बिल्कुल मेरे को समझ में नहीं आ रहे। और हमारे इरफान मेमन भाई के भी मैसेज आए हैं और उन्होंने भी अच्छा अम्मी के लिए उन्होंने दुआओं के लिए दरख्वास्त की है और सबको सलाम भी कहा है। इरफान मेमन को भी कहा है और वो क्लिनिक में है। अल्लाह ताला इरफान मेमन की वालदा को, हमारी प्यारी सी आंटी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। बहुत सारे मैसेजेस आपके हैं जो कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, जिसके लिए मैं माजरा चाहता हूं। हमारी मुश्क के भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। मुश्क बिल्कुल नाराज नहीं होना तुम मेरे लिए, मुश्क हो है भाई, मजाक नहीं उड़ाए भाई। अरे भाई मुश्क नाराज हो रही है, आप लोगों ने उसको बहुत तंग कर दिया है भाई। छोटी सी नन्नी सी जान है हमारी प्यारी सी, मुश्क को तंग नहीं करें आप। मुश्क मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी, ठीक है भाई। और उसके साथ साथ हमारी ये प्यारी सी बहना जो है हलीमा, उसका भी मैसेज आया। तानिया हसन जी के हबी को उन्होंने हैप्पी बर्थडे कहा है और बड़ी लेट पता चला, वरना तानिया जी आपके हबी को और आपको ढेरों दुआएं मिलती और ढेरों विशिंग यहां पर होती, बट अभी भी है, ऐसा नहीं है, सब दिल में कह रहे होंगे भाई, बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। इसके साथ ही जनाब आप लोगों से इजाजत चाहेंगे, लेकिन इजाजत चाहने से पहले हमारे अयूब लाला और हमारी प्यारी सी मानूर ने जो एक ट्रैक डेडिकेट करने के लिए कहा था ना, मानूर ने वो डेडिकेट करेंगे। लाला ने कहा था मेरी फरमाइश कैंसिल, तो ये हमारे फिल्मी सीन से हटकर है, तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आप लोगों से कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो मानूर तुम्हारी फरमाइश, एलो फड़ो।

Hyderabad, Rahim.

क्या खूबसूरत कलाम और आवाज भी इतनी खूबसूरत थी हुमैरा चन्ना की। वक्त 2:06 हो चुके हैं और आप सबको एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहूंगा। और अमीन ने हमें ज्वाइन किया जनाब मेट्रोबल से, कहते हैं क्या क्या तकदीर ने किसी के लिए चुनवाए थे, जिनके तकदीर ने इसी लिए चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशीमन आग लगाते कोई। सलाम संजू सिस्टर। और वक्त जो है 2:07 हो चुके हैं एफएम रेडियो पाकिस्तान के कराची स्टेशन से, मेरा आपका साथ है। प्रोग्राम आप यकीनन रेडियो पर सुन रहे हैं एफएम रेडियो पाकिस्तान के, मगर ये साथ साथ फेसबुक पर हम लाइव वीडियो पर भी मौजूद हैं। मिर्जा शुजात कहते हैं जनाब गुजर खान से लाजवाब प्ले लिस्ट एंड अखीर कर दिता ही तुसी जबरदस्त जी। कोई गल नहीं, अखीर तो होनी हुई नहीं, अखीर होगी होने थे। वो कहते ना कि चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मैं जद चल ही पिया ना फिर टंबकटू भी पहुंच ही जाना। मैं नासिर काजमी का एक कलाम मैं शामिल करना चाहूंगा प्रोग्राम में और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। नासिर काजमी, क्या खूबसूरत गजल उनकी, नए कपड़े बदल के जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। और फिर हकीम नासिर साहब क्या कहते हैं, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, सन हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। क्या खूबसूरत आइए, वाकई क्या खूबसूरत शायर थे, क्या खूबसूरत। हुमा क्या कहती है जनाब, हुमा सदीकी क्या कहती है, हकीकत आस्तीन का सांप वाली बात शोभ जी, बीमारी के वक्त सब ऐसे ही हो जाते हैं जी। हाँ बिल्कुल, और मैंने इसलिए कहा ना कि मैंने तो खुद ये भुगती है, मैं और ये मैं जिंदगी में ये सारे तजुर्बात मैं कर चुका हूं।

Hall.